0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: रसे खर रक्षमा चंद्र से खर रक्षमा चंद्र से खर रक्षमा। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दया गीता चिंतन माला अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 73वां श्लोक।
1: भूदारता मुदवहद्य बपेक्षया श्रीर भूदारयेव किमत सुमते लवस्व केदारम कलित मुक्ति महौषधीनां पादारविन्द भजनं परमेश्वरस्य। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि भेदो दुक्तेर दिव्य गंधैरमंदैः आशा साटी कस्य पादारविन्दम् चेतः पेटिं वासितं मे तनोतुः कल्याणीनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वोऽङ्गितं अनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेता समस्त जगतां वृषभाधिरूढः। भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसन्ति कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षत् सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाक तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यतो। तो शिवानंद लहरी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तुम्हारे में ही छुपे हुए परम आनंद का जो खजाना है उसको तुम निकाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए संसार में तुम दीनहीन दुखी होकर भटक रहे हो। वास्तव में तुम इतनी संपन्न हो कि तुम्हें संसार में किसी के द्वारा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद बहुत संपन्न हो, लेकिन तुम्हें अपनी संपदा का बोध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दो चीज उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने, कल हमने संकेत किया था, इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति भिखारी वह जहां रहता था, जहां सोता था, उस जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ था। जमीन उसी की है, उसी ने खरीदी थी जमीन,
0: जमीन जिसकी है उस जमीन के अंदर जो खजाना है वह उसी का होता है, तो उस जमीन के अंदर का जो खजाना था वह भी उसी का ही है, लेकिन उसे पता नहीं है। या तो कोई भूगर्भविद उसको ये बता दे कि तुम्हारी जमीन के अंदर खजाना है, उसके बात पर विश्वास करके उसके उत्खनन में प्रयत्न किया जाए तो खजाना मिल सकता है। या फिर तंत्र और वनस्पति आयुर्वेद के हिसाब से कुछ विशेष काल में विशेष मुहूर्त में विशेष वनस्पतियों का रसायन का निर्माण करे और वो रसायन आंख में अंजन के रूप में लगावे तो उसको जमीन के अंदर गड़े हुए खजाना दिखाई पड़ेगा। तो उस पर यहां संकेत कर रहे हैं शंकराचार्य जी सुलोक के द्वारा। तो वो रसायन क्या है? आंख में लगाने वाला अंजन। तो कल संकेत किया था ध्यानांजनम, खुद तुम यदि ध्यान का निरंतर अभ्यास करो तो उस ध्यान रूपी अंजन के द्वारा तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल और इतनी स्वच्छ हो जाएगा कि तुम्हें वो खजाना दिखाई पड़ने लग जाएगा। शंकराचार्य जी शरीर को ही वह भूमि कहते हैं, शरीर को ही वह खेत की उपमा दी है। ये तुम्हारा जो शरीर है यह वह जमीन है जहां पर तुम नित्य रह रहे हो पैदा होने से आज तक, लेकिन वो जो शिव खजाना है वो भी यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन तुम भीख मांगते हुए संसार में भटक रहे हो। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम। तम प्रदेश माने जिस जगह पर अंधकार रहता है उसको क्या कहते हैं? तम प्रदेश कहते हैं। अंधकार को तम और अंधकार जिस जगह पर है जगह को प्रदेश, तम प्रदेश। अज्ञान कहां पर है? आपके पास अज्ञान जो है वो अज्ञान कहां पर है? तम प्रदेश क्या है? तम का प्रदेश क्या है? अज्ञान रहता कहां है? अज्ञान पांव में रहता है कि नाक में रहता है कि आंख में रहता है? कहां रहता है? ये माताजी कह रही हैं अज्ञान आंख में रहता है। अज्ञान अविद्या वेदांत का पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान कहां रहता है? तो अंतःकरण रहता है। अंतःकरण में अविद्या अंतःकरण में रहती है। और तुम कहां रहते हो? तुम भी उसी अंतःकरण में रहते हो। और तुम्हारे यार कहां रहते हैं? परमात्मा कहां रहता है? वो भी अंतःकरण में रहता है। तो एक ही जगह पर रहने पर भी तुम परमात्मा को देख क्यों नहीं पा रहे हो? तो तम प्रदेशम, तम माने अविद्या के द्वारा आवृत हुआ हुआ है, ढका हुआ है। अब विचार करो, परमात्मा को देखने के लिए जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? परमात्मा को जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? नहीं है। कैसे उल्टी बात कर रहे हो तुम? परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप है, तो वह परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप होता हुआ अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, तो तुम कैसे उस अज्ञान को हटाओगे? परमात्मा नहीं हटा पा रहा है क्या अपने प्रकाश से अज्ञान को? तुम्हारी रोशनी और परमात्मा की रोशनी में कौन सी रोशनी अच्छी है, कौन सी रोशनी बलवान है। जहां तक गीता के हिसाब से विचार करें तो तुम्हारे पास जो प्रकाश है वो तो परमात्मा से आया हुआ प्रकाश है कि नहीं। गीता के हिसाब से यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तभी परमात्मा के जो प्रकाश है वह जीवात्मा को प्राप्त होगा। तो मूल सूर्य अंधकार को हटा नहीं पा रहा है तो क्या सोलार की लाइट अंधकार को हटा पाएगा, बोलो है? दिन के मध्यान्ह में चमकते हुए सूर्य जिस अंधकार को हटा नहीं पा रहा है, उस अंधकार को उसी सूर्य से चार्ज किया हुआ सोलार लाइट हटा पाएगा क्या? कल्पना कर लो, कल्पना कर लो, है ना? और यदि तुम अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करने का मतलब क्या हुआ? तुम तो सोलार लाइट हो, तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो सोलार लाइट है कि नहीं, बोलो। परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और तुम जो जानोगे वो बुद्धि के माध्यम से जानोगे, ध्यान देना। क्योंकि इस श्लोक पर मुझे थोड़ा सा वेदांत के प्रक्रियागत विचार करना था, इसलिए मैंने इसको स्वर उठाया। तुम्हारी बुद्धि तो सोलार पैनल है भाई, परमात्मा का लाइट सोलार पैनल में पड़ेगा, चार्ज होगा, तब जाके बुद्धि से तुम संसार के पदार्थों को जानते हो। और चार्ज न हो सोलार पैनल, हमारे काठमांडू में, नेपाल में काठमांडू में आश्रम है, ठंडियों में तो बहुत ठंडी होती है, इसीलिए प्राय करके नेपाल में पानी गर्म करने के लिए सोलार पैनल लगाया जाता है। बत्ती के लिए भी सोलार पैनल लगाते हैं, लेकिन बत्ती की अपेक्षा पानी गर्म करने के लिए प्राय करके हर घर में सोलार पैनल लगाते हैं। तो दिन भर पानी गर्म होता है, एक टंकी में रिजर्व होता है, तो सुबह नहाने के लिए वो टंकी का पानी ले लेते हैं, तो अलग से बिजली से या गैस में या अन्य साधनों से पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिन में खूब धूप खिला हुआ हो तब तो पानी सुबह खूब गर्म गर्म मिल जाएगा, और कदाचित आज की तरह मौसम दिन भर बारिश हुई, धूप नहीं खिला, तो दूसरे दिन सुबह पानी गर्म नहीं मिलने वाला, क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा, सूर्य नहीं है तो क्या करेगा वो पैनल। इसी तरह अंतःकरण में तीन चीज हैं, समझे कि नहीं? अंतःकरण में तीन चीज है, एक तो स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है, और तीसरा अविद्या है। तो अंतःकरण क्या हुआ? तम प्रदेश हुआ कि नहीं? परमात्मा प्रदेश भी हुआ, तम प्रदेश भी हुआ। अब इनमें से परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, जीवात्मा सोलर पैनल है, परमात्मा सूर्य है, जीवात्मा की बुद्धि सोलर पैनल है, और जीवात्मा जो जानेगा उस पैनल के माध्यम से जानेगा। तो अंधकार को अब हटाएगा कौन? बोलो परमात्मा हटाएगा कि जीवात्मा हटाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, अब वो स्वयं प्रकाश होता हुआ वहां अंधकार रह गया शिवानंद लहरी में, इसी शिवानंद लहरी में ये बात स्वयं शंकराचार्य जी ने प्रश्न के रूप में उठाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, मैं गुनगुनाता रहता हूं। पहले व्याख्या हो चुकी है पिछले साल, मैं आज फिर प्रसंग आ गया, मैं सुना रहा हूं तुम्हें। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शिव से, एको वारी जबांधव क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वालोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रव विद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भविन्मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीयमे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव। इसी शिवानंद सलहरी में शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे शिव, हमने देखा है एक वारिज बांधव सूर्य, वारिज माने कमल, कमल का मित्र माने सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं? वारिज बंधु, कमल का मित्र। क्योंकि कमल का एक नियम है, सूर्य उदय उदित होंगे, सूर्य प्रकट होंगे तो वो खिलेगा, और सूर्य अस्त हो गए तो बंद हो गए। व्यवहार में भी हमारा नियम क्या है, अपना खासम खास मित्र सामने आए तो चेहरा खिल उठता है, उठता है कि नहीं? और अपना कोई दुश्मन आ गया तो क्या चेहरा खिलेगा? प्रसन्नता होगी मन चेहरे में, लेकिन अपना पुराना मित्र आ जाए अचानक और मिल जाए, फिर देखो चेहरा। तो मित्र का काम क्या है? चेहरे को खिलाने का है कि नहीं, बोलो? मित्र को देखते ही चेहरा खिल उठता है, लेकिन मित्र अकेले आए तो खिल उठेगा, लेकिन अपने बच्चे कच्चे चार पांच लेकर बंबई आ जाए तुम्हारा हॉलीडे मनाने, तुम्हारा चेहरा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा ना। अब वो एक हफ्ता बैठ जाएगा, तुम्हारा बैलेंस ही सब बिगड़ जाएगा, तो चेहरा सिकुड़ जाएगा। फिर भी अंदर से चेहरा सिकुड़ने पर भी बाहर तो दांत तो देखा नहीं पड़ेगा, व्यवहार के लिए करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? नहीं तो क्या कहेगा वो? बड़ा भारी मित्र कहता था हम गए और अब दरवाजे ही नहीं खोली। तो हर जवान दवा सूर्य का नाम है मित्र, सूर्य का नाम है वारिज बंधु मित्र, एक अकेला है अंतरिक्ष में, सूर्य अकेला ही है, अकेला है। दिन में 10 सूर्य नहीं होते अंतरिक्ष में, एक ही सूर्य होता है। एक वारिज बांधवा सूर्य करता क्या है? क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम, रात भर पृथ्वी और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ अंधकार को अपनी उपस्थिति मात्र से एक सेकंड में ही नष्ट कर देता है। किसी का मदद लेना पड़ता है सूर्य को? है धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ रात्रिकालीन अंधकार को हटाने के लिए सूर्य को किसी का मदद लेना पड़ता है? अकेले हटा देता है, है? सूर्य में इतनी सामर्थ्यता है, और तुम्हारे में कितनी सामर्थ्यता है? शंकराचार्य जी कहते हैं हे शिव त्वम कोटि सूर्य प्रभा, सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके करोड़ गुना प्रकाश तो तुम्हारे में करोड़ गुना। तम कोटि सूर्य, कोटि सूर्य सम प्रभा तम। सूर्य यदि 100 वाल्ट का है

0: इंटरनल है, वो तुमसे चार्ज हो रहा है और तुमसे चार्ज होकर सूर्य में 100 वाट रोशनी का यदि पावर आ गया और करोड़ों वाट पावर तो तुम्हारे स्वरूप में है, किसी से चार्ज होना नहीं है, स्वाभाविक ही है। तुम कोटि सूर्य प्रभा, तब
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: उस छोटा सा सूर्य ने धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ तम अंधकार को एक सेकंड में हटा दिया और सूर्य स्वयं सबके आंखों के सामने प्रकट भी हो गया। अंधकार भी हटाया, स्वयं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी हो गया। और इधर तुम उस अंतकरण में रह रहे हो और उसी अंतकरण में अविद्या भी रह रही है। और अंतकरण में रहने वाली अविद्या कितनी बड़ी है, अंतकरण खुद अंगुष्ठ परिमाण का है, तो उस अंतकरण में रहने वाला जो अविद्या कितना बड़ा है। वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक भवे तप मत्तमा। मेरे अंतकरण में रहने वाला अंधकार क्या तुम्हारे रोशनी से भी प्रकाश से भी हट न सकने वाली है। किदृक भवेद मत्तम, मैं क्या मानूं, मेरे अंतकरण के जो अंधकार है वह तुम्हारे रोशनी से भी नहीं हट सकता, ऐसा मानूं? तब तो फिर किसी भी रोशनी से नहीं हट सकता। फिर वो रह कैसे गया, जहां तुम हो वहीं वो अंधकार रह कैसे गया? मैं ये मान रहा हूं कि हे शिवा, तुमने वह अंधकार हटे यह संकल्प नहीं किया है, इसलिए रह गया। मेरा भक्त मेरा दर्शन करे इस प्रकार के मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं हुई है, ये अज्ञान रही रहे मेरे साथ ही अंतकरण में रहे, तो अज्ञान के प्रति तुमने करुणा कर दी और मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों? बोलो। मैं प्रार्थना करता हूं महाराज साक्षात प्रसन्नो भव। अब ज्यादा हो गया, उस अंधकार को तो हटाना ही है और आप ही हटा पाओगे, मैं नहीं हटा पाऊंगा। इस तरह वहां प्रार्थना की गई थी, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, वो अंधकार तुम्हारे लिए कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती है। अंधकार भले ही रहे वहां, लेकिन तुम एक ऐसा अंजन तैयार करो जिसको आंख में लगाओ, लगाते ही अंधकार में ही वस्तु दिखाई पड़ेगी, अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रसायन की विशेषता है। बोलो, अंधकार यदि हटा नहीं सकते हो, अज्ञान को तुम हटा नहीं सकते हो, तो क्या करो? ऐसा अंजन बनाओ आंख के, वो आंख में लगा लो, अंधकार भले ही रहे लेकिन उस अंधकार में भी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहां शिव दर्शन के लिए अंजन, कौन सी अंजन का प्रयोग करना है, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ध्यानांजन, नित्य निरंतर ध्यानांजन से அவித்யா.

0: के रहते हुए ही शिव दर्शन हो जाएगा। ध्यानंजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम, तम प्रदेश माने हृदय। जैसे जमीन के अंदर गाड़े हुए धन है, उसी तरह तुम्हारे हृदय में शिवरत्न है। कौन सा रत्न? शिवरूपी परमात्मा रूपी आत्मा रूपी रत्न है। और न देखने के कारण तुमको, उसके ज्ञान न होने के भान न होने के कारण तुम्हें तमाम दुख दरिद्र से जूझना पड़ रहा। ध्यानंजनेन समवेक्षतम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री। अंजन लगाने से जमीन के अंदर गड़े हुए धन तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने आप वो धन बाहर नहीं आएगा। दिखाई तो पड़ेगा कि यहां पर धन है। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग कहीं बोरिंग करना होता है खेत में, किसान लोग वह यंत्र लाते हैं ना, क्या जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सिस्टम के माध्यम से वो यंत्र लाते हैं और वो जमीन में वो यंत्र को रखते हैं। उससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर कितनी गहराई में पानी है और कितनी मात्रा में पानी है, ये पता चल जाता है। और उसके आधार पर वहां कुआं खोदना होता है या डीप बोरिंग करना होता है। किसान बोरिंग करते हैं या फिर कुआं खोद लेते हैं, लेकिन वो यंत्र पानी है ये तो बताएगा, इनार तो कुआं तो नहीं खोदेगा ना, ट्यूबवेल तो लगाएगा नहीं। वो पता लगने के बाद ट्यूबवेल तो तुमको लगानी पड़ेगी, दूसरे यंत्र से प्रयोग करके तब उसको कुआं खोदा जाए या फिर ट्यूबवेल लगाया जाए। इसी तरह ध्यान रूपी अंजन का प्रयोग करने पर तम प्रदेश अंतकरण में अविद्या से ढके हुए शिव तत्व यहां आए, ये तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए तुम्हें साधन का प्रयोग करके उत्खनन करना पड़ेगा। जैसे धरती में धन है पता चलने के बाद धरती का उत्खनन करना पड़ेगा कि नहीं, तो उत्खनन करने का यंत्र क्या है? नाम मंत्री, शिवस्मरण नाम मंत्री। सतत शिव का स्मरण, परमात्मा का स्मरण या फिर नाम जप। कौन सा नाम? महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार से समाधि लाभ हो सकता है ये बताया। समाधि लाभ के लिए एक प्रक्रिया बता दी, योग चित्त वृत्ति निरोध। पांच प्रकार के चित्त वृत्ति हैं, उन पांचों प्रकार के चित्त वृत्ति को निरोध करना पड़ेगा, तब चित्त वृत्ति सर्वथा निरुद्ध हो जाएगा, तब तुम्हें समाधि उपलब्धि हो जाएगी। और कदाचित यदि अष्टांग योग साधना न करके चित्त वृत्ति निरोध नहीं कर सके तो उसके विकल्प के रूप में महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधानात वा ये कर दिया, ये दूसरे सूत्र का निर्माण कर दिया। वा माने विकल्प, चित्तवृत्ति निरोध करो तो समाधि का आनंद का अनुभव होगा, और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो इसका विकल्प है ईश्वर प्रणिधान। और तुम ईश्वर प्रणिधान करोगे तो ईश्वर कृपा से तुम्हें वो समाधि, चित्तवृत्ति निरोध के बिना भी समाधि की अनुभूति होगी। ईश्वर प्रणिधान हुआ, ईश्वर प्रणिधान क्या उपाय क्या है महाराज? तो महर्षि ने पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रक्रिया बता दी, तज्जप तदर्थ भावना, उसके नाम का सतत जप करो और नामी का स्मरण करो। देखो, नाम का जप करो, नामी का स्मरण करो, तज्जप तदर्थ भावना। तो जप के लिए किस नाम का प्रयोग करें महाराज? तो वह महर्षि पतंजलि ने कह दिया, प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, एकाक्षर ही प्रणव, क्योंकि प्रणव को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम के रूप में प्रस्तुत किया। ओमकार को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम है, निर्दिष्टतमम प्रियतमम, सबसे नजदीक का नाम, जो सबसे प्रिय होता है वही ना नजदीक का होता है ना? कभी कभी घर में व्यवहार में नाम रखा जाता है, मां बाप या घर के कुटुंबी और बंधुजन कुछ नाम रख देते हैं। नामकरण के दिन में तो जो राशि से नाम जुड़ा, राशि से जो मिल गया, उसी अक्षर के आधार पर नामकरण कर देते हैं। लेकिन बहुत प्यार से पुकारने वाला नाम घर में ज्यादा प्रयोग होता है। मां भी बहुत प्यार करती है तो कुछ और नाम से पुकारने लग जाती है। कोई व्यक्ति जरा मोटा हो तो घर में ए मोटे बोल देते हैं, घर का बाप भी बोलता है कि ए मोटे इधर आओ, मां भी बोलती है कि ए मोटे इधर आओ। मां जो प्यार से बोलती है मोटे, लेकिन वो उसको प्रिय नहीं है। बड़े होने के बाद यार दोस्तों के बीच में मां फिर कह दे मोटे, उसको अच्छा लगेगा? तो कोई पूछेगा कि अरे भाई तुझे मोटे क्यों कहा किसी ने? बोले मेरी मां बड़े प्यार से कहती थी बचपन में, वही आदत पड़ी है इसलिए वही बोल रही है। समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो निर्दिष्टतम अति प्रिय नाम है, प्रणव का जप करो, तज्जप तदर्थ भावना। परमात्मा का यानी शिव का सबसे प्रिय नाम ओम है, यही वह कुद्दाली है, वही ये फावड़ा है जो तुम परमात्मा के आवरण को हटाकर निरावृत कर सकते हो। तो वेदांत में और भक्ति में ये अंतर है। वेदांत में उस आवरण को हटाने की क्षमता सिर्फ अखंडाकार वृत्ति में है, अखंडाकार वृत्ति के बिना उस आवरण को तुम नहीं हटा सकते हो। तो भक्ति में सतत प्रणव जप शिव नाम मंत्र ही, उसी में इतनी क्षमता है कि वह उस आवरण को हटा सकता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती, कल इसकी थोड़ी व्याख्या तो की थी हमने, एक सामान्य शास्त्र में या सामान्य लोक भाषा में ये प्रचलन है, जहां दिव्य रत्न रहते हैं वहां सर्प का निवास होता है, यही कहा जाता है। इसलिए कोई धन के प्रति आसक्त हुआ कोई धनिक व्यक्ति सेठ बोले कि वो धन के प्रति आसक्त दिखाता है, तो लोग कह देते मरने के बाद सर्प बनेगा ये, ऐसा कह दिया जाता है व्यवहार में, है ना? पैसे के लिए जो मरीमेट करता है वो, तो व्यवहार में कह देते ये इतना मरता है पैसे के लिए संपत्ति के लिए, ये जरूर मरने के बाद सर्प बनेगा ये, क्योंकि संपदा और सर्प की राशि एक ही है भाई, और ये मान्यता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, भुजग भूषण है, भुजक का माने सर्प का भूषण क्या है? मणि। तो हम जीवात्मा, तमाम जीवात्मा रूपी सर्प का भूषण क्या है? मणि। मणि क्या है? तो शिव। शिव ही जीव का भूषण है, जैसे मणि सर्प का भूषण है, वैसे ही शिव परमात्मा जीव का भूषण है। क्या है वो? ये पादार पद्मन मिहते शिवते कृतार्था। जब वह रत्न प्राप्त होता है, तब शिव रत्न प्राप्त होता है, तब जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अन्य अलंकार के माध्यम से, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शंकराचार्य जी ये दूसरा वसंत तिलका छंद के में एक श्लोक की रचना करते हैं। यहां दूसरा भाव है। भूधारताम उदवहत यदपेक्षया श्रीर भूदार एव किमत सुमते लवस्व केदार मा कलित मुक्ति महौषधीना पादार विंद भजनम परमेश्वरस्य। अनुप्रास शब्दालंकार अनुप्रास। भूदार भूदार केदार पादार, यही तो छंद के जो है अनुप्रास है। भूदार पादार केदार, ये देख लो, ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, शब्दालंकार अनुप्रास बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? भूदारताम उदवहत यद अपेक्षया श्री भूधार। श्री भूदार किसके लिए कहा? श्री भूधार विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं? श्री और भू दारा वाले हैं। दारा माने पत्नी, संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं? दार। तो श्रीदार भूदार दो पत्नी वाले हैं भगवान विष्णु। तो आप विष्णु क्यों नहीं हो पाए है? एक पत्नी हो गए ना, इसीलिए आप एक पत्नी हो गए, खाली श्रीदार हो गए आप है ना। संपत्ति तो है, भूधार नहीं है। या फिर भूधार हो गए, फ्लैट तो जैसे तैसे मां बाप ने बना के रख दिया था, पैसा नहीं कमा पाए। हां सूचक भाई भूधार तो पिता से मिल गया होगा आपको, है ना। फ्लैट पिताजी का खरीदा हुआ है कि अपना खरीदा है? अपना है तो आप भूधार है ना। भूदार तो हो गए, श्रीदार नहीं हुए। संपत्ति है, पैसों छे मने आपो है। तो भूदार श्रीदार तो वही कहा गया। श्री भूदार क्या किया उन्होंने? श्री भूदार ने है श्री लक्ष्मी और भू पृथ्वी दो दारा वाले भगवान विष्णु ने क्या किया? भूदारताम उदवहत, भू का उद्धार किया। भूदार माने पृथ्वी, भू दार माने बराहा, भूदार माने बराहा सुअर। सुअर का काम क्या है? भू उदार पृथ्वी का उदार करते हुए चलता है, उधेड़ता है वो, उधेड़ना, हिंदी में उधेड़ना बोलते हैं ना, पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है ना वो, सूंड से पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है, उसको भू उधेड़ना बोलते हैं हिंदी में, उधारा बोलते हैं संस्कृत में। भू उदार ताम यानी बराहा रूप धारण किया। किसने? श्री भूधार ने भूदारता का रूप धारण किया। किसके लिए महाराज ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण किया। क्यों धारण किया, करना पड़ा बराहा का रूप? तो दो प्रसंगों में भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण करना पड़ा। दो जगह ये प्रसंग आता है। एक तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पाताल में ले गया, तो सारे सृष्टि का विस्तार करने का जो आधार है धरती, वो धरती ही नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार कहां करे? तो भू आधार के बिना सृष्टि कहां से करेंगे ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज तुम सृष्टि का विस्तार करो तो कहते हो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। पृथ्वी होती तो पृथ्वी में रहता, पृथ्वी तो है ही नहीं है, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। देख लो, बोले पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्याक्ष ले गया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया पाताल में। तो जब तक तुम उस पृथ्वी को पाताल से लाकर यहां प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता महाराज। तो अच्छा भाई, पृथ्वी को मैं ला देता हूं। तो ब्रह्म का रूप धारण किया और गए पाताल में, और हिरण्याक्ष से लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को लाकर स्थापित की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आरंभ किया, मानस सृष्टि, तब सनत कुमारों को सबसे पहले उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हमारा नाम और काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा कभी भी बूढ़े न होने के कारण तुम्हारा नाम कुमार है, मेरी आशीर्वाद, मैं कृपा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कभी बूढ़े न होगे, इसलिए तुम कुमार रहोगे। काम क्या करना है हमने? बोले भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम लोग सृष्टि विस्तार में लग जाओ। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं बाबा, हम ये प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम्न स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: पूज्य प्रेमपुर जी महाराज, प्रातस्मरणीय परम गुरु अखंडनाथ जी महाराज के पुनीत श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहां पर पधारे हुए संत, विद्वान एवं श्रोतागण को वंदन। प्रतिवर्ष प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा यह जो प्रागोत्सव मनाया जाता है, थोड़ा ख्याल है यह आया कि हम यहां भागवत कहीं मनाते हैं, उसमें हम एक बात करते हैं, नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मगर जब इस संत ऐसे प्रागट्य दे और विश्व भर में उनके गुणगान हो, उनकी जो आराधना की जाती हो, तो ऐसे आनंद ही आनंद स्वरूप मुझे महाराज जी को विश्वभर में यह आनंदोत्सव हृदयपूर्वक मनाया जाता होगा। और ऐसे परम संत के श्री चरणों में बैठकर अन्य संतों के आशीर्वचन सुनने का एक पुनीत लाभ आज के दिवस हमें प्राप्त हो रहा है। बड़ी शांति से हम लोग यह पूरा प्रवचन धारा जो महाराज जी द्वारा चलेगी उसका आनंद ले। बहुत ही खुशी की बात यह है कि एक तो ऊपर राम कथा चल रही है और अनायासी हमें बड़े भावपूर्वक जो यहां अध्यक्ष के रूप में विराजे हैं वह प्रयाग पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य के परमपूज्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज प्रथम बार यहां उनके परम शिष्य स्वामी श्री अनंत राम शास्त्री जी द्वारा पधारे हैं, उनको हम आप सब की तरफ से वंदन करते हुए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में स्वागत करते हैं। बाकी यहां जो विराजमान संत हैं उनको तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं। गिरीशान जी महाराज आज का ये पूरा कार्यक्रम है जो आनंद महोत्सव का उसका संचालन करेंगे। प्रथम ट्रस्टी माल्यार्पण करके आशीर्वाद लेंगे। तो मैं सभी ट्रस्टियों को विनती करूंगा कि आप सब पधारें और माल्यार्पण की विधि करें।

नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अश्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज हम सभी लोग, जैसे अभी हमारे गिरीश भाई ने बताया, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का पावन आविर्भाव दिवस है, जो वर्षों से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से बहुत धूमधाम के साथ संपन्न किया जाता है। और आज भी स्वाभाविक ही हमारे गुरुदेव का जो एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण था, शायद भारतवर्ष में एक ही आश्रम आनंद वृंदावन ऐसा है जहां सभी आचार्यों की जयंती मनाते हैं हम लोग, और उसी कड़ी में आज स्वाभाविक है ऐसा प्रतीत हुआ जब गिरीश भाई ने बताया कि पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज यहां के लिए स्वीकृति दिए हैं, तो पूज्य गुरुदेव के जो दृष्टिकोण का ही प्रतिफल है कि सभी संप्रदाय के, सभी प्रस्थान के जितने संत हैं, चिन्मय मिशन हो, रामकृष्ण मिशन हो, वल्लभाचार्य जी महाराज के पुष्टि मार्ग के महापुरुष हो, रामानंद संप्रदाय के हो, रामानुज संप्रदाय के हो, निम्बारकाचार्य के तो ब्रज में ही है बहुत, सभी के हृदय में पूज्य गुरुदेव के प्रति एक जो विलक्षण भाव था वो आज भी दिग्दर्शित होता है। और आज उसी का प्रतिफल है कि हम अनेक संप्रदाय से, अनेक प्रस्थानों से अनेक संत महापुरुष यहां विराजमान हैं। गुरु जी के प्राकट्य के अवसर पर उनके आनंद की चर्चा, इसलिए इस उत्सव का नाम है आनंद जयंती। उनका जीवन ही आनंद था, प्रत्येक उनकी घटना में, प्रत्येक उनके प्रवचन में, प्रत्येक उनके जीवन की क्रिया में एक आनंद छलकता रहता था। और आप लोगों में से बहुत लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, उनका सत्संग किया है, तो आज उस आनंद जयंती को हम लोग आनंद पूर्वक, इसलिए साथ में हमारे हरीश भाई बैठे हैं जो कुछ भजन और कुछ अपने भाव दोनों प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आनंद जयंती है। आज वेदांत को थोड़ा सा दूर रखेंगे हम लोग क्यों स्वामी जी? स्वामी मुक्तानंद जी हमारे तो वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान है, स्वामी जी से कुछ भी आप सुन लीजिए उनको पूछना नहीं पड़ता कि क्या सुनाएंगे, वो पूछते हैं आप क्या सुनेंगे, तो ऐसे विद्वान है। लेकिन हमारे साथ रह रहे कि अगर उनको भी थोड़ा ब्रजवासी बना रहे हैं तो आज हम लोग आनंद जयंती का एक आनंद लेंगे यहां सभी संतों के माध्यम से। और प्रारंभ में जैसे हमारी परंपरा है, हमारे इस संस्थान के पुरोहित आचार्य विश्वनाथ जी इस आनंद जयंती पर सर्वप्रथम अपने भाव पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। विश्वनाथ जी,

0: अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की। जरा प्रेम से बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की। एक दो मिनट कवि गुरु कालिदास ने रघुवंश में प्रथम सर्ग में दूसरा श्लोक लिखा है, भारतीय संस्कृति में भारतीय व्यक्ति को कैसा जीना चाहिए। शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषय ऐषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। श्लोक सरल ही है, आप समझ गए होंगे, तो फिर भी हमारे जो आश्रम की जो व्यवस्था है, कालिदास जी कहते हैं शैशवे व्यस्त विद्यानाम बाल्यावस्था में अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषय ऐषिणाम गृहस्थाश्रम की बात करते हैं, और वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये श्लोक पढ़ने के बाद या विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महाराज जी का जीवन देखेंगे तो इससे अभी आगे है। वो इसलिए कि सत साहित्य प्रकाशन, सभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से बारंबार ये महाराज जी के पहले तो नहीं निकलता था, लेकिन आग्रह से जन्म के बारे में अभी तो आने लगा है, कई भक्तों का आग्रह था और वो पढ़ता हूं मैं, तब ध्यान में आता है कि महाराज जी को बालपन से ही वो तो संन्यास्त थे, अद्वितीय अध्यात्मी। इस जन्मोत्सव के निमित्त मुझे तो यही लगता है कि ये ईश्वर कृपा के बिना होता ही नहीं, ईश्वर के विशेष कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही ऐसे पुण्यात्मा यहां पे आते हैं, और वो जाते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, वो साहित्य के रूप में संतों की वाणी के रूप में उपलब्ध ही है। इसलिए महाराज जी के बारे में ये कहूं, अभी पहले ही आते आते तो महाराज जी का ही वचन हमने सुना है, बाद में ही हमने मंगलाचरण किया है, तो जितना भी साहित्य अभी उपलब्ध भारत में, कहते भारत में उपलब्ध है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वो छोड़ दीजिए, अखंडानंद उच्छिष्टम जगत सर्वम, कोई भी वक्ता का, मैं तो बारंबार देखा हूं, कोई भी वक्ता का, अरे ये तो हमारे महाराज जी कह रहे हैं और सरलता से कहते हैं। इसलिए आनंदोत्सव के दिन कोई भी साहित्य या संतों की वाणी सुन करके आनंद मनाइए, यही महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि। ओम तत्सत।
1: बहुत सुंदर आचार्य विश्वनाथ जी ने, और बात सत्य है, सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के संत महापुरुष वक्ता हमारे गुरुदेव का साहित्य का अवलोकन करते हैं। पूज्य करपात्री जी महाराज के पास जब ब्रह्मसूत्र का प्रथम प्रकाशन हुआ तो उनके पास पुस्तक भेजी गई। पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा कि भागवत और रामायण पे तो कथा कोई भी कर सकता है, लेकिन ब्रह्मसूत्र पर कथा केवल पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ये पूज्य करपात्री जी महाराज के वचन थे जब उन्होंने देखा, ऐसा उनका विलक्षण व्यक्तित्व, इतनी सरलता सहजता। अब मैं हमारे प्रेमपुरी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री मधु भाई, हमारे गुरुदेव के जो बहुत जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया है और इस समय शायद 90 से ऊपर होंगे, 96, हाँ, इनके लिए भी एक बार ताली बजाई। रेगुलर सत्संग में आते हैं प्रेमपुरी आश्रम में, हम लोग तो इनके सामने विद्यार्थी भी रहे हैं, पढ़े भी हैं, तब से महाराज जी की सेवा में हैं, और इस समय 96 की उम्र में आप सोच सकते हैं कि रेगुलर सत्संग में आ रहे हैं और आज कुछ अपने भाव व्यक्त करेंगे महाराज जी के चरणों में। श्री मधु भाई तिजोरी वाला।
2: स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम, सभी संतों को मेरे चरणों में प्रणाम। अखंडानंद जी महाराज जी का यहां आनंद जयंती में तो आते थे, ये तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई भी उत्सव हो और ज्यादा में ज्यादा समय अगर महाराज जी ने किधर भी स्पेंड किया हो तो वो मुंबई में था, और महाराज जी का प्रवचन यहां महाराज जी सभी आप संत महात्मा बताते रहते हैं कि महाराज जी अगर भागवत के ऊपर प्रवचन करते हो तो भागवत ही है और कोई बात, ऐसा कोई भागवत का सुनने को मिला हो ऐसा हमको लगता नहीं था, ऐसा महाराज जी का भागवत होता था। और भागवत कितना, 10 दिन का, 2 हफ्ते का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसा स्वामी जी महाराज जी का भागवत हमको सुनने को मिला। और ज्ञान की बात करें तब, जब गिरीशानंद जी महाराज ने बताया ज्ञान की बात करें तब, महाराज जी ऐसा लगे कि ऐसा ज्ञानी कोई हमने देखा ही नहीं, भूतो न भविष्यति जैसी बात थी। ऐसा स्वामी जी महाराज का हमें लाभ मिला है। मैं तो 1960 से महाराज जी के साथ जुड़ा था, महाराज जी के पास से हमने दीक्षा भी लिया, ये सब हमने बहुत बहुत अच्छी तरह से, महाराज जी को मैं बुलाने के लिए जाता था, वहां प्रेमपुरी में से, वहां से आश्रम से, उसका आश्रम से यहां ये लेके आता था। तो एक दफे महाराज जी ने मैं बताया कि महाराज जी आप तो उपनिषद पर जो भाषण करते हैं वैसा लगता है कि इसमें भी रसानुभूति होती है। महाराज जी ने क्या जो उत्तर दिया, महाराज जी ने कहा तुम्हारा रुचि बढ़ गया है, ऐसा महाराज जी ने बताया। और अभी तो आज हम सभी संतों को सुनने के लिए आए हैं, महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम।
1: मधु भाई ने बहुत सुंदर अपने अनुभव और संस्मरण सुनाए। अब महाराज जी के पूर्व आश्रम की परंपरा से आदरणीय श्री सोमदत्त जी, जो सत साहित्य का संपूर्ण कार्य देख रहे हैं और बड़ी सुंदर कविता भी बनाते हैं, शायद वो आज कविता और अपने भाव दोनों ही रखेंगे। आदरणीय सोमदत्त जी।
3: नारायण नारायण नारायण नारायण। समुद्र शास्त्राद मृताभ नीरम आनीय या वर्षति जीवनाय मेघाय माना मतिरीवयस्य भजेतमानंद मखंड रूपम। बात आनंद की है तो एक तो है ज्ञान की गंगा और एक भक्ति तरंगणी यमुना। तो गंगा के तट पे जन्म होता है और यमुना की गोद में क्रीड़ा। महाराष्ट्र का जन्म काशी में और वृंदावन में उनकी लीला। संगम तब पूरा होता है जब गंगा यमुना सरस्वती तीनों हो। तो सरस्वती दिखती नहीं है पर उसका आभास प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में होता है। ये हमारी गंगा यमुना सरस्वती की धारा महाराष्ट्र के जीवन में अनवरत बहती रही और उसमें हम लोग अभी तक डुबकी लगा रहे हैं। और वो जल की अविरल धारा हमारे ऊपर बरस रही है, हम सब पर बरस रही है और उसमें हम लोग भीगते रहें और एक दूसरे पे वो छींटा उछालते रहें, जल क्रीड़ा करते रहें, हम उसी में निमग्न रहें, उससे उबरे नहीं, हम कभी रूखे नहीं हों, हम कभी सूखे नहीं हों, वो जलधारा हमको आप्लावित करती रहे, हम पर बरसती रहे। स्वामी जी सुना रहे हैं तो सुनने का मन करता है तो वही सुना जाए। नारायण नारायण नारायण।
4: अरे कविता तो सुनाइए।
3: कविता का क्या है कि महाराष्ट्र से किसी ने पूछा कि ये तुलसी बाबा इतना लिख गए सारा कुछ, तो महाराज जी ने कहा, छाती ठोक के कहा कि जितना तुलसीदास को मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। तो कहे क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो कहे वो भी द्विवेदी थे, मैं भी द्विवेदी हूं। तो ये महाराष्ट्र की बातें।
4: ये तो संस्मरण हुआ, कविता बाकी है।
3: कविता तो फिर तुलसीदास की ही आएगी। अब देखो इसमें महाराज जी का ही, तो हम अपनी बात क्या कह सकते हैं। तो शब्द वाणी कवि कविता उपखान, अब इसको एक एक को लेके संप्रदाय बनते चले गए। महाराष्ट्र जी बताते हैं शब्द जो शब्द साखी है वो हमारे कबीर के यहां प्रमाण हो जाती है। वाणी जो है वो निर्गुणिया लोग नहीं मानते, वाणी वचन जो प्रमाण है हमारे वेदांत में आ जाता है। कविता कवि कविता उपखान उपखान ये सब दे दे के सारे लोग उदाहरण दे दे के भक्ति का ही प्रचार करते हैं और भगत बनते हैं, चाहे वो भगत नास्तिकता का हो। कोई नास्तिक बोले कि मैं नास्तिक हूं तो महाराज जी कहते हैं कि वो नास्तिकता का भक्ति कर रहा है कि नहीं। कोई बोले कि मैं वामपंथी हूं मार्क्सवादी हूं तो वो मार्क्स का भगत हुआ कि नहीं। तो सब तो है भगत, और जो भक्त का भक्ति का प्रतिपादन करता है वेदांत वेद वेदांत और ये जो पुराण आदि हैं उनका ये लोग खंडन करते हैं कि इसमें भक्ति उसको मत पढ़ो। तो ये उल्टी बात हो गई। जो वेद और पुराण हमारी भक्ति का प्रतिपादन करते हैं ये लोग भक्त बनते हुए उसी भक्ति के प्रतिपादन करने वाले वेद और पुराण को काटते हैं, कितनी उल्टी बात है। तो ये महाराज जी की स्पष्टीकरण है, तो उनका आनंद उनको ही समर्पित हम प्रणाम करते हैं।
1: सोमदत्त जी थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, कविता सुनाने में शायद शाम को सुनाएंगे। अब हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज की सेवा में स्वामी श्री अनंत राम जी शास्त्री जी जो साथ में ही आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे गुरुदेव के इस पावन आविर्भाव दिवस में वो भी अपने भाव पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। श्रद्धेय शास्त्री जी
5: बोलो। सद गुरुदेव भगवान की जय।

ब्रह्मर्षि वंशोद्भव दिव्य रूपम् कात्यायनम् गोत्र समुज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पद पंकज चञ्चरी।

ही जे पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरण नित्य वंदनीय अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत अनंत वंद्य अखंड आनंद के प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अनंत वंद्य धर्म सम्राट प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। मंचस्थो अनंत श्री विभूषित समादरणीय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय परम पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, परम पूज्य समादरणीय स्वामी उमेशानंद जी महाराज एवं मंचस्थ मुदमंगलमय संत समाज, समस्त संत वृंद यति वृंद के पावन चरणों में कोटिशः नमन वंदन। भगवत चरितामृत कथामृत प्रेमी समादरणीय सज्जन वृंद, कौशल्या अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों, हमारे इस कार्यक्रम में आचार्य समादरणीय श्री विश्वनाथ जी शास्त्री जी महाराज, समादरणीय श्री सोमदत्त शास्त्री जी महाराज, जितने भी आचार्य विद्वान गण हैं सबको कोटिशः नमन। आइए आज इतना विलक्षण आज पावन पर्व है, ऐसे पावन पर्व पर आपके बीच में कुछ कहने का सुंदर सुयोग प्राप्त हुए हैं। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के 24 अवतार की चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत में 24 अवतार का वर्णन किया गया है और रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखा है। उन्होंने कहा कि जब जब देश पर संकट के बादल मंडराते हैं, गौ ब्राह्मण वेद आचार इन पर जब संकट के बादल मंडराते हैं तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है। गीता में भी भगवान ने कहा है परमात्मा के अवतार के तीन ही कारण बताए गए हैं, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म का स्थापन। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि योगे चुके। रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया है का जब जब हो ही

0: हूं, तो हमारे देश पर जब जब संकट के बादल मंडराए तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे परम पूज्य परम वंदनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज के रूप में, परम पूज्य अनंत श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के रूप में परमात्मा इन्हीं रूप में आए और आकर के भक्तों पर कृपा किए। तो हमारे शास्त्रों ने जो कहा है ऐसे पावन पर्व पर हम आपके बीच में आज दो शब्द कहने के लिए सुंदर सुयोग प्राप्त किए। हम परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज का ज्यादा तो नहीं, लगभग आज से 55-56 साल पहले प्रयाग में परम पूज्य स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री के आश्रम पर महाराज श्री का पदार्पण हुआ था और उसमें सरकार स्वामी बिठूर कानपुर के थे, परम पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज थे, बड़े बड़े संतों का वहां पर पदार्पण हुआ था। माघ मेले के अवसर पर वहां महाराज श्री का दर्शन हुआ था, बाल्यापन की अवस्था थी। तो हम ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटशः नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अधिक समय न लेते हुए हम मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद महापुरुषों की वाणी को सुनने के लिए लालायित थे, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के पावन चरणों में कोटशः नमन वंदन करते हुए अपने वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम देंगे। प्रेम से बोले बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
1: नारायण, शास्त्री जी ने अपने बहुत सुंदर भाव मानस की पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए। अब मैं स्वामी श्री हरितीर्थ जी महाराज, जो दक्षिण भारत से प्रतिवर्ष और ये उनके प्रेम और निष्ठा का परिचायक है कि वो बिल्कुल ठीक दिवस का ध्यान रखते हैं, और मैं एक दिन पहले कह ही रहा था गिरीश भाई से कि वो स्वामी जी प्रतिवर्ष आते हैं और आएंगे, हमको इनका एड्रेस नहीं मालूम, इनको हमारा नहीं मालूम लेकिन वो प्रतिवर्ष बिल्कुल ठीक समय से 7:30 के पहले ही महाराज जी के इस पावन आयुर्वाद दिवस में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है आपसे मिलकर के। आप भी अपने भाव पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें स्वामी श्री हरितीर्थ जी महाराज।
2: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
3: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
5: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Yuvan Shishya aur Guru kaisa hota hai? Ulta. Yahan bilkul ulta hai. Ye to bilkul yuvan hai. और शिष्य क्या है? सब बुड्ढे हैं। दूसरा आश्चर्य, गुरु मौन के द्वारा ही व्याख्यान किया, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम। हाँ, और शिष्य के सब संशय का उच्छेद हो गया, नाश हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि ही चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अभी देखो आश्चर्य क्या है, शिष्य वृद्ध है, जो जीव होता है कोटि कोटि शरीर में जन्म ग्रहण करके त्याग करते करते वो क्या हो गया है? अभी क्या हो गया? वृद्ध हो गया है। एक भक्त ने कहा भगवान को, मुझे आगे आने वाले दुख की कोई चिंता नहीं है मरने के बाद, क्योंकि मैं सब शरीर में जाके सब प्रकार का दुख भोग चुका हूं, मेरे लिए कोई दुख नया नहीं है। पर आज एक नया दुख आ गया है। भगवान कहते क्या दुख है कि आप सामने हैं और फिर भी मैं दुखी हूं, ये दुख नया है। आपकी सन्निधि में अर्जुन विषाद योग हो रहा है, देखो ये इसको दूर करिए। तो दूसरा अर्थ होता है वृद्धा शिष्याहा, का अर्थ होता है जो शिष्य बुद्धि से परिपक्व हो चुके हैं। कल मुझे टाइम नहीं मिला बोलने का, दो चीज होती है समय में, देह की दृष्टि से और मन की दृष्टि से। आप खाते पीते रहे और विटामिन की गोली लेते रहे, च्यवनप्राश भी खाते रहे, थोड़ा योगासन करते रहे, जो भी है, ये शरीर क्या होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। एजिंग, उम्र होना हमारे हाथ में नहीं है, उनको रोक भी सकते हैं, नहीं है। यू एज एवरी डे, यू एज। पर एक बात याद रखना, जैसे शरीर की उम्र होती है, इसके साथ साथ मन भी परिपक्व होता है कि नहीं होता है। वही बचपना अंदर है अभी, वही सब खेल खिलौना के चीज अच्छी लगती है, वही नाटक चेटक अभी भी वही अच्छा लगता है। देयर इज नो ग्रोथ इनसाइड। इसके लिए यत्न किया जाता है। फिजिकली यू एज, इमोशनली यू हैव टू मैच्योर। मेरे लड़के ने मुझे स्वामी जी फोन नहीं किया, अमेरिका गया, हमको ईमेल भी नहीं भेजता है, ये सब क्या है, अंदर गड़बड़ है। अभी तेरे को बच्चे की क्या जरूरत है, वो अपनी जगह है, तू अपनी जगह भजन कर। स्वामी जी आप ऐसी बात करते हैं, हमको ये सब क्या है, अंदर गड़बड़ है, इन्होंने ये कहा, उनका ये हो गया, अभी भी वही बात है। देयर इज नो, यू मे एज फिजिकली इनसाइड, बचपना 80 इयर्स चाइल्ड, 80 साल का बच्चा, तो इसको कहते हैं कि आंतरिक विकास के लिए, परिपक्वता के लिए ये कर्म करते करते अमुक प्रकार की भावना से जब कर्म करते हैं तो चित्त में प्रसाद आता है, परिपक्वता आती है, जिसको श्री कृष्ण ने सयुक्त है, इसको कहते हैं मैच्योर योगी, माने द्वंद्व सहिष्णु बने, सुख दुख लाभा लाभे जया जयो इस सब में समत्व जिन्होंने प्राप्त किया है। ये नहीं कि आप समत्व प्राप्त कर लो, उसका उपाय बहुत भारी है। उनमें से जो गुजरा है, आज कुछ भी हो जाए वो प्रसन्न चित्त है, और कुछ भी आगे होने के है उसके लिए भी तैयार है। ये जो पॉइस है इनसाइड, इसको कहते हैं वृद्धाहा। शिष्य सब है वो तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबके सब क्या है, तैयार बैठे हैं। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में 60,000 ऋषि मुनि विराजमान थे, सब वयोवृद्ध, और सुखदेव जी 16 साल की उम्र, युवा। पर इसका अर्थ याद रहे, शरीर से नहीं मतलब है, वो जानता है कि आत्मा नित्य है, सत्य है, इसलिए देह की उम्र के साथ आत्मा की उम्र आगे बढ़ती नहीं है, पीछे घटती नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नित्य है, इसलिए युवान है। बराबर समझ में आया। अभी दूसरा कह दे, शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य के सब संशय दूर हो गए। इस संशय का अर्थ होता है ना समझी, ये ठीक है कि ये ठीक है। ब्रह्म विद्या का अध्ययन करे कि संसार का काम करे, इस उपाय से हमारा दुख होगा दूर होगा कि इस उपाय से दुख दूर होगा, आत्मा एक है कि अनेक है, मरने के बाद आत्मा कहां जाता है। अभी पहले बताया आत्मा अद्वितीय एक है, व्यापक है, फिर जाता कहां है। देखो दो प्रश्न में गड़बड़ती नहीं, वो कहते हैं आत्मा तो स्वामी जी नित्य अजर अमर है, व्यापक है, और फिर मरने के बाद जाता है। हे, व्यापक जाएगा नहीं, और जो जाएगा सो व्यापक होगा नहीं। अल्प में गति होती है, व्यापक में गति नहीं होती है। सबका आत्मा अलग अलग दिखता है, क्योंकि आपका दुख मेरा दुख अलग है, इसलिए आत्मा भिन्न है कि एक है। ये सब संशय होते हैं। जिज्ञासु का नाम ही क्या है, डाउट्स आर देयर। मैं ब्रह्म को जान सकता हूं कि नहीं, वो भी डाउट है। प्रमाण से ज्ञान होगा कि दूसरा कोई उपाय करने से ज्ञान होगा, डाउट है। तो जब तत्व ज्ञान से बोध हो जाता है

की निवृत्ति उन्होंने करी। अभी सबसे बड़ी बात है, यहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, मौन व्याख्या। मौन मानी होता है चुप रहना, बोलना नहीं। देखो आप लोग भी शांति से बैठे, मौन है इस समय। गुरु अगर मौन होकर प्रवचन कर सकता है क्या? मुझे हर रोज एक ही काम करना है, गिरिज पे लाएंगे, मैं आगे एक घंटा चुपचाप बैठा रहूंगा और चला जाऊंगा, इसमें प्रवचन होगा? प्रवचन में मौन नहीं है, मौन में प्रवचन नहीं है। तो मौन व्याख्यानम का अर्थ क्या होता है कि समग्र वेदांत शास्त्र कोई शब्द के अर्थ का निरूपण नहीं करता है, शब्द का सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्मात्मिका का बोध करा सके। शब्द का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधित है। मैं कहूंगा घड़ा तो आपको दिखता है, मैं कहूंगा कुर्सी तो आपको दिखती है, मैं कहूंगा कलकत्ता तो आप अनुमान कर सकते, जैसे बॉम्बे सिटी है तो वो भी सिटी है, लोनावाला ऐसे, तो ये सब अनुमान से जानते हैं, शब्द का अर्थ है। पर जो ब्रह्मात्मा है वो कोई शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, चीज नहीं है बाहर की। और उसका बोध कराने के लिए अभिधान वृत्ति से, मानी शब्द के अर्थ के रूप में नहीं, उसके लिए लक्षणा की जाती है। तो जिसको इम्प्लाइड मीनिंग इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करके जो शब्द से नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल करके उसको समझाया जाता है, इसका नाम क्या है? प्रमाण। और वो लक्षणा से बोध कराता है। इसलिए कहते हैं मौन व्याख्यानम, जो समझना है वो तो साइलेंस ही है। आगे आएगा आगे के श्लोक में, तो इस प्रकार से मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणै आवृतम ब्रह्म निष्ठैहि आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणा मूर्ति मीडे। मेरे पीछे बोलना, निदये सर्व विद्यानाम विषजे भव रोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्ति दक्षिणामूर्तये नमः नमः। प्रफी भावे हमारा ये नमस्कार है, किनको नमन कर रहे हैं? श्री दक्षिणामूर्ति को। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह दक्षिणा मूर्ति ही शिवः। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह शिवः दक्षिणामूर्ति। आप लोग को मालूम है चार दिशा मुख्य है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दूसरी बात ये भी मालूम होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, मृत्यवे नमः। दक्षिणाभिमुख जो है, दक्षिणा दिशा मृत्यु की है, कोई दक्षिण दिशा मृत्यु नहीं चाहता है। और उत्तर दिशा जो है वो अमृत स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लोह चुंबक को भी रखेंगे तो जो उत्तर दक्षिण बताता है, तो आकर्षण वो सुई में जो है वो उत्तर की ओर है, और दूसरा जो भाग है फिर वो दक्षिण बताता है। अट्रैक्शन इज ओनली द नॉर्थ, नॉट इज साउथ।

0: इसलिए जो भी आनंद सुख चाहता है वो अपना मुख कहां रखेगा? उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा की ओर कोई देखना नहीं चाहता है, और मरने के बाद हमारे चरण दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं, इसलिए सोते भी नहीं लोग दक्षिण दिशा में, चरण करके नहीं सोते हैं, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है। अब गुरु क्या है? गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। दक्षिणा वाट है, दक्षिणा अभिमुखा, मूर्ति ही अस्य, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। क्यों? मृत्युंजय, इस विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मा मृत्यु जन्म रहित है, ये बोध जिसको हो गया है। अहम वाट अजह, मैं जन्म रहित हूं। क्यों? नित्य हूं। जो काल में आता है उसका नाश होता है, आत्मा काल का भी प्रकाशक है, वो नित्य आत्मा मैं हूं। इसलिए गुरु जो है वो मृत्यु को तर गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए उसको दक्षिण दिशा का कोई भय नहीं है। गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, तो शिष्य कौन सी दिशा को देख रहे हैं? उत्तर दिशा को देख रहे हैं, और इसलिए ये शंकर भगवान दक्षिणाभिमुख होकर जो शिष्य मोक्ष चाहते हैं उनको उपदेश करते हैं। ठीक है, अर्थ आ गया? दक्षिणा मूर्तये नमः। और कैसे है? सर्व विद्यानाम निधये। दो प्रकार की विद्या है, द्वे विद्ये वेदितव्य, परा च अपरा। परा परमात्मक विषय विद्या, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान जिस विद्या में है, वो विद्या का नाम क्या है? परा विद्या, ब्रह्म विद्या, भूमा विद्या, गीता माता, ये सब आ जाएगा। आत्मा एक अद्वितीय है, तो ब्रह्म विद्या भी कैसी है? एक है। विषय एक है, इसलिए विद्या भी कैसी है? एक है। अनात्मा कितने हैं? गुजराती में गण्या गण्या ही नहीं, वीण्या तो है, मारी बुद्धि में माई नहीं कहा है, इतना है। एवरी ईयर वन डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज दे डिस्कवर, दैट इज कॉल्ड साइंस। ये भी जानना है, इसको भी हमने जाना है करके, द गॉड पार्टिकल। तो अपरा विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण अनेक है, ये सब विद्या परा और अपरा जिसमें है वो है दक्षिणामूर्ति। आपको एक बात बताता हूं, ज्ञान सिर्फ ईश्वर में ही है, ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। सब विद्या का खजाना, सब विद्या का आश्रय परब्रह्म ही है। अगर इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, मुझे 3 घंटा चाहिए। ओके, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रस्य योनि कारणम तस्मात् शास्त्र योनि। ये समग्र शास्त्र जिससे प्रकट हुए हैं वो भी बिना प्रयास, तस्य निष्वसितम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद, इस मंत्र को भी लोग नहीं समझते, सीधा मंत्र है। लोग ऐसे ट्रांसलेशन करते, भगवान के निश्वास का नाम ऋग्वेद है, भगवान की श्वासोश्वास क्रिया में वेद प्रकट होते, ये नहीं है भैया। वहां लिखा है कि जैसे हमारी सांस चल रही है इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन. यू डोंट ब्रीथ, ब्रीथिंग हैपन्स अनलेस यू आर फॉलोइंग रामदेव बाबा. ये सब करेगा, देखो प्राणायाम कुछ करेगा तो प्राणायाम है, नहीं करेगा तो क्या है, श्वासायाम है ना. तो अपने आप सांस चलती है, तो सांस कैसे अनायास बिना प्रयास से चलता है, ऐसे जिस परब्रह्म से ये समग्र वेद आयास के बिना, चिंतन के बिना, सोचने बिना प्रकट हुए हैं, इसी का नाम है परब्रह्म, जिससे सब विद्या आई है. एक विद्या का ज्ञान प्राप्त करते करते हैं बाल क्या हो जाते हैं, अगर रहे तो अगर रहे तो सफेद हो जाएगा. प्राय पढ़ने वाले के बाल क्या होता है, चले जाते हैं. है हमारे साथ पढ़े हैं, इनके चले गए. बड़ा फायदा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बालनेस को क्या बोलते हैं, गंजा, गंजा, गंजा होने में बहुत फायदा, हमको अच्छा लगता है. एक तो है कि जब शावर मानी स्नान करने खड़े रहते पूरा फायदा होता है उसका, बाल रुकने वाला नहीं है बीच में. दूसरी बात यह कीड़े नहीं पड़ते हैं. तीसरी बात यह कंगन की जरूरत है क्या, कंगी की जरूरत नहीं है. चौथी बात है लड़ाई में कोई बाल पकड़ के खींच नहीं सकता, कितना फायदा है ना. और कभी जरूर पड़े तो दिखा दो आईने की जगह, यह भी काम करेगा. तो एडवांटेज आइए. सो यहां कहते हैं कि सर्व एक एक विद्या प्राप्त करने में कितनी मेहनत है. एक एक विद्या में इतना समय लगता है. और अगर आप एक पुस्तक लिखे, इफ यू ऑथर अ बुक, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. वो भी कितनी टेक्स्ट को देख देख के उसका उद्धरण लेके लिखेंगे. मानी जिसने कुछ लिखा है उसकी बुद्धि को हम समझ सकते हैं कि कितनी विशाल होगी. पाणिनि आप पढ़े अगर, इसको कहते हैं 600 और 5000 बिफोर बीसी इट वॉज देयर. व्हाट अ क्लासिकल लैंग्वेज, ऑल रूल्स आर देयर. पाणिनीय व्याकरण के नियम जिन्होंने प्रकट किए उसकी बुद्धि कितनी होगी. तो जिससे सब वेद प्रकट हुए उसकी बुद्धि को क्या कहना, किमु वक्तव्यम तस्य सर्वज्ञत्वम, क्या बात करना सर्वज्ञत्वे, ये हमारा ईश्वर. पहले समझो ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है. और वो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय. हमारे स्कूल में ये प्रार्थना को बहुत गुजराती में बोलते थे, ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेज ते तो लई जा. देर कैन नॉट बी बेटर प्रेयर, मोस्ट यूनिवर्सल प्रेयर. आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. दुनिया में जितनी समस्या है सबके सब किसके कारण है, ना समझी के कारण, बेवकूफी के कारण है. आपके घर में समस्या है वो किसके कारण है, ना समझी के कारण. और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको समझदारी दो. और ब्राह्मण हर रोज प्रार्थना करता है दियो यो नह, ये न वो दियो यो न प्रचोदया, दियो यो न प्रचोदया, हो भगवान मेरी बुद्धि को तेजस्वी मत बनाना, न प्रचोदया बोल रहा है. दियो यो नह प्रचोदया होना चाहिए, नह अस्माकम दिह यह प्रचोदयति प्रेरयति. हमारे सबकी बुद्धि को भगवान आप तेजस्वी बनाए, क्या प्रार्थना है. कौन बनाए, जो सर्वज्ञ है वो मेरी प्रार्थना को जानता भी है और वो प्रार्थना को सफल करने में समर्थ है, क्योंकि सर्वसमर्थ सर्वशक्ति है. संकल्प मात्र से जिसकी सृष्टि हुई है वही परमेश्वर. निधये सर्व विद्यानां विषजे भवरोगिणां. एक रोग हुआ है हमको, वो क्या है, जन्म मृत्यु रूपी रोग। और ये रोग में एक बात है, कोई ये नहीं कहता है मैं रोगी हूं और बहुत प्रसन्न हूं, नहीं हो सकता है। जो रोगी होगा वो क्या करता है, सब स्वरों में गाएगा, आ ऊ ई करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है। और संसारी जो भी होगा वो क्या होगा, स्वामी जी आपसे बात करना है, मानी बात करना है क्या है, मैं कैसे आनंद स्वरूप प्रसन्न हूं, ये सब कहना है नहीं, महाराज मेरी अभी शादी हुई है, हाँ, और सास के साथ रहना पड़ता है, हाँ, मैं अपनी सास के घर में जाके रहता हूं, हाँ, आई एम घर जमाई हूं, हाँ, बहुत तकलीफ है, लड़की अच्छी है उसकी मां गड़बड़ है, ये क्या हुआ, दुख है। दूसरा दुख यह है कि मेरे मेरे मित्र की बढ़ोतरी होती है वो मेरी नहीं होती है, एक जेलसी है ना, बहुत आश्चर्य है। दूसरा सुखी होता है ये देख के मैं दुखी होता हूं, दूसरा ज्यादा पढ़ता है देख के मैं दुखी होता हूं, ये क्या है, जेलसी है, इतना दुख है, सबको दुख है। भव रोग जन्म मृत्यु रूपी दुख, उसकी निवृत्ति के लिए कौन उसका वैद्य है, और वैद्य रोगों के दूर करते हैं, पर भव रोग को दूर करने वाले को दे, भव रोगिणाम विषजे वैद्य है। आपको मालूम होगा भगवान के समुद्र मंथन के समय जितने रत्न के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए उसमें से एक अवतार अंतिम कौन सा था, धन्वंतरी, हाथ में सब औषधि को लेके आए। जो संसार औषधि के लिए उपाय कर सकते हैं वो भव रोग के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, पर एक ही उपाय है वो भी आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। अर्जुन भी भव रोग से पीड़ित था तो भगवान ने उसको कितना भी चमत्कार दिखाया विश्वरूप का, उसका भव रोग दूर हुआ, विश्वरूप देख के भी डर गया भगवान, इससे डर लगता है क्योंकि आप मेरे से अलग है तो डर लगता है। एक ही उपाय है, भगवान को भी पढ़ाना पड़ेगा कि तू पूर्ण है, और कोई नान्य पंता विद्यते नाय सर्वलोकानाम गुरवे। इस लोक परलोक में जितने हैं इंद्रादि के भी गुरु कौन है, दक्षिणामूर्ति। फिर बोले दक्षिणामूर्तये नमः, ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ठीक है, मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा आपको समय से। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini ஸ்ரீ நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: வோ மேரி சூக்ஷ்மயா ஜோ புத்தி ஜோ ஹே வோ விஜ்ஞாதா ஹே வோ விஜ்ஞான் ஹே பிரகர்ஷன் வோ காலி ஜ்ஞாதா நஹீ ஹே வஹா விஜ்ஞாதா கஹா ஹே ஆத்மா கோ சிர்ஃப் உஸே ஜ்ஞான் நஹீ ஹே வோ விஜ்ஞாதா யானே உஸே யே சப் ஜோ பி சாட்சி பன் ரஹே ஹே உஸ்கா பி பான் ஹே. தேக்கியே யே கந்தா ஹோனா விஜ்ஞாதா ஹோனா வோ சப் க்யா ஹே, வோ சப் बाहर से आप भीतर आ गए पर भीतर से और भीतर प्रवेश करने के लिए कहा कि ये आत्मा तो उससे भी पर विज्ञाता है. तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है भाई, बहुत जो सरल लग रहा है, जो विश्व का लय हो रहा है, हमारी अपनी जागृत अवस्था का लय हो रहा है. ये खाली एक सेकंड बोलने की बात नहीं है कि मेरी जागृत अवस्था लय हो रही है, ऐसा नहीं है. वो तो एक टेबलेट नींद की खा ले तो भी हो सकती है, उसमें इतनी मेहनत क्यों करनी है. इतना भी क्यों सोचना है, एक टेबलेट खा लेंगे जागृत अवस्था नहीं हो गई, अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो अंतिम पराकाष्ठा है जागृत अवस्था, भाई आप कहते तो ठीक है पर लय होता नहीं है, लय नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा प्रस्थान है, ये दूसरा प्रस्थान है। और पहला प्रस्थान क्या है भाई? पहला प्रस्थान स्मृति प्रस्थान, हाँ स्मृति प्रस्थान है, यानी श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता को अगर शंकराचार्य जी ने ही प्रस्थान में लिया है, प्रस्थान त्रयी में लिया है, कई उपनिषद में कई जगह पर श्रुति को पहला बताते हैं फिर स्मृति को प्रस्थान बताते हैं। अब उसके विचार में न पड़ते हुए स्मृति प्रस्थान में लिखा है, कहाँ लिखा है? कृष्ण परमात्मा ने अनन्या चिंतयंतो माम मन मना भगवत भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। ये सब बातें उन्होंने क्यों की? हाँ, अनन्य भाव से। ये अनन्य भाव से अगर हम जो जब पढ़ाते हैं प्रस्थान त्रयी तो स्मृति प्रस्थान पहले लेते हैं, इसका कारण एकमात्र ये श्लोक समझाने के लिए है, इसीलिए हम श्रुति को पहले नहीं लेते भले लिखा हुआ है। स्मृति को पहले कहने का कारण कि पूरा गीता, भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय सब प्रकरण ग्रंथ और पूरा 18 अध्याय पढ़े तो ही ये जागृत अवस्था का आप लय कर सकते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था के लय की पराकाष्ठा क्या है? अनन्या चिंतयंतो माम। देखिए यहाँ जो है अवलंबन बदल गया है, भगवत गीता में अवलंबन क्या है तो बोले चतुर्भुज कृष्ण परमात्मा है, विश्व रूपात्म कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म रूप परमात्मा है, यानी वहाँ अवलंबन तो है, वहाँ अवलंबन किसका है? वो मुरलीधारी का अवलंबन है, कृष्ण परमात्मा के शब्द का अवलंबन है। अगर शरीर से नहीं दिखता है तो उसके शब्द का तो अवलंबन है ही, भगवत गीता में श्री भगवान हुआ चे कहते हैं। अगर आप परमात्मा को द्विभुज या चतुर्भुज मानने के लिए तैयार नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, वो बोले इतना तो मानते हैं ना, बोले इतना तो मानते हैं, तो उनका जो शब्द जो है वो शब्द अवलंबन वहां है ना श्री कृष्ण का, इसी प्रकार यहाँ वही अवलंबन ने ओम का रूप ले लिया। और इसीलिए कृष्ण परमात्मा ने कहा कि मैं ही प्रणव हूँ। ओहो, यानी यहाँ उपनिषद में जब मैं गया तब मैं प्रणव बन गया अर्जुन। प्रणव सर्व, भगवान अपनी बातें करते हैं ना, हाँ विभूति योग में, विभूति योग सुना होगा, तो विभूति योग में परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं प्रणव हूँ, प्रणव सर्व वेदेशु, जो भी जानने जैसा है उसमें मैं प्रणव हूँ, ये ओंकार हूँ। यानी हे अर्जुन, जब मैंने कहा इस प्रकार मेरी भक्ति आप करेंगे और भक्ति पूर्ण होगी, तब मैं जो ओंकार रूप से प्रणव बनने वाला हूँ उपनिषद में, वो तू समझ पाएगा, वहां तू मुझे ही पाएगा। ये कृष्ण परमात्मा ओंकार रूप से यहाँ घुस गए, प्रणव हो गए, ठीक है, पर कब होगा ये ओंकार रूप समझ में कब आएगा? तब वहां पढ़ा होगा, सुना होगा अनन्या चिंतयंतो माम, ये परमात्मा जो है उसकी अनन्य रूप से भक्ति, परमात्मा के अनन्य रूप से भक्ति यानी क्या भाई? रोज उनके दर्शन करना वो तो के काफी नहीं है, रोज पूजा करना बोले काफी नहीं है, रोज नाम लेना काफी नहीं है। देखिए मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, जरूर नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, इनफ नहीं है, ठीक है, इनफ नहीं है, काफी नहीं, तो बोले इतना किया वो काफी नहीं है, नहीं। और भक्ति की जो बात की है शास्त्र में, उपदेशकार में बड़ी अच्छी बात की है, उसकी डेफिनेशन, ईश्वर अर्पितम नेक्षयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, ये चार स्टेटमेंट, ये चार पाद में सब कुछ आ गया। तो बोले आपने कहा कि ईश्वर अर्पण से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए, वो भी हमने किया, तो ईश्वर को अर्पण यानी क्या? ये क्या हम समझ रहे हैं? जागृत अवस्था का लय समझ रहे हैं। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना यानी क्या? ईश्वर को ये सब दे देना, अर्पण करना, करना अपने मन का ही नहीं। तो ईश्वरार्पण बुद्धि जो है उसका फर्स्ट स्टेज जो है, शुरुआत जो है वो ऐसी है कि हे परमात्मा तू जो भी दिखाएगा वो मैं देख लूंगा, आई विल नॉट कंप्लेन के ये रूप क्यों दिखाया, आई विल नॉट कंप्लेन कि ये क्यों सुनाया, आई विल नॉट कंप्लेन कि ये यहाँ क्यों मुझे चला के ले गया, ये क्यों स्पर्श कराया, ये क्यों खिलाया, ये सुगंध क्यों आई, मुझे तो रोज अच्छा लगता है, तो चमेली की सुगंध क्यों दे दी, मेरे बाजू वाला जो सेंट लगा आया है वो सेंट मेरे पसंद का नहीं है, तूने मुझे ऐसे बाजू वाले के पास क्यों नहीं बिठाया जो मेरी पसंद का सेंट डाल के आया है। नो टू कंप्लेन, ये बात बहुत छोटी लगती है पर अकड़ती है हमें, क्षण क्षण में हम विचलित हो रहे हैं, तो आपसे ऐसा नहीं करना है। और ये जो भक्ति है, बराबर ठीक से सुनिए, ये पूरा समर्पण नहीं है। अब आप कहेंगे अब आप हद कर रहे हैं, इतना भी करना दुष्कर है, हमने करना अभी डिसाइड किया कि घर जाके अभी ऐसा करेंगे कि वॉट एवर इज कमिंग टू मी टोटल एक्सेप्टेंस। पर देखिए टोटल एक्सेप्टेंस जो है उसमें एक कमी रह जाती है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेज है और उसकी पराकाष्ठा हम बाद में बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसमें एक्सेप्टेंस तो है, पर दुख के साथ भी हो सकता है कि भाई चलो आत्मा को पाना है ना, इतना दुख सहन लेते कर लेते हैं, ये मैं चला लेती हूँ, यानी बहुत बड़ा उपकार कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस में भी चला लेना है, ऐसा भी होता है। अब एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको गुरु के ऊपर बड़ा प्रेम है, शास्त्र के ऊपर बड़ा प्रेम है, परमात्मा के ऊपर भी बड़ा प्रेम है, और उसे पाने के लिए ये करना पड़ता है ना, अरे भाई वो मिलता है तो चलो ठीक है, आई कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ हद हो गई ना, अभी उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज है, अरे हंसते हंसते एक्सेप्टेंस करना है, हाँ विलिंगली लविंगली, और वो हंसना पड़ता है और हंसी आ जाती है वो अलग है ना। वो तो नहीं चलेगा परमात्मा के साथ, तो ऐसे आप करते गए विलिंगली, और ये इसकी पराकाष्ठा जो क्या होगी, इसकी जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है अनन्य भक्ति की, वो पराकाष्ठा में आप चले गए तब जाके ये जागृत अवस्था का लय हो सकेगा। और ये पराकाष्ठा ये है कि हे परमात्मा आज से ये आंख मैं तुझे दे देता, बराबर सुनिए, ये आंख मैं आई गिव इट टू यू, यानी आंखें फोड़ देनी है, चढ़ा देनी है, नहीं क्या करना है पता है, वो परमात्मा को इतना ही कहना है, एक ही बार कहना कि हे परमात्मा अब ये आंख तुझे दे दी है, आई गिव इट टू यू इन अ गुड हेल्दी फॉर्म, इसी क्षण मुझे इसी क्षण ये बुद्धि आई ना, इसलिए देरी हो गई तो भी जो बची है दृष्टि वो मुझे तुझे दे देता हूँ, तुझे यहाँ से जो देखना है वो देख, तेरी ही दी गई है ना, इट इज योर्स, मैं तुझे आई एम गिविंग यू एज अ गिफ्ट, तुझे जो भी मन हो जाए ना वो तू देख ले। देखिए जो पिता होता है अपने पुत्र को क्या कहता है, क्या देता है, वो पुत्र के नाम सब कुछ कर देता है, सब कुछ लिख देता है, अपना सब नौछावर कर देता है, क्या कहता है, ये मैंने तुझे अपना सब कुछ दे दिया, ये चाबी तुझे दे दी, तुझे जो करना है कर, ऐसा नहीं कहते आप, देखे फिर उसके पीछे पड़ते हैं ये क्यों किया ये नहीं किया, तो वो दिया नहीं हुआ। पराकाष्ठा क्या है, पराकाष्ठा ये है कि ये आंखें मैंने तुझे दे दी, तुझे जो देखना है वो देख, तो फिर अब दृष्टि क्या हो जाएगी, अब समझौता नहीं करना पड़ेगा, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, जो भी दृष्टि देखेगी ना वो आप सोचेंगे कि ये तो वो देख रहा है, ही इज हैप्पी, अब देखने वाला वो है, दुखी सुखी उसको होना है, आप दुखी सुखी नहीं होएंगे, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये कान मैंने तुझे दे दिए, हाँ ये कान मैंने तुझे दे दिए, तो अब तुझे जो सुनना है वो सुन, फाइन आई गिव इट टू यू, आई गिफ्ट इट टू यू ओ लॉर्ड ऑलमाइटी, कम विद इन मी। अभी आप कुछ किसी को देते हैं ना, कोई अनजानी व्यक्ति भी आपको कुछ दे दे तो एक बार तो ले ही लेना पड़ता है ना, अगर आपने उसको दृष्टि दे दी तो उसको वो चाहेगा नहीं, पापी में से पापी होंगे तो भी उसको अंदर आना ही पड़ेगा, गिफ्ट दे दी है ना, आना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा, इट इज अ गिफ्ट, उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये कान मैंने तुझे दे दिए, जो सुनना है वो सुन, तो उससे क्या होगा, जो भी आपको कोई सुनने की इच्छा ही नहीं होगी वही सुनेगा, और जो सुनेगा उससे सुख दुख आपको नहीं होगा, वो वही सुन रहा है, ओ ही इज यूजिंग माई। देखिए एक बात सुनिए, कोई गुरु स्वामी जी आपके यहाँ बैठे हैं, कोई भी संत बैठा है, और नीचे आपकी हजारों गाड़ी, आप सब गाड़ी लेके आए हैं, तो नीचे गाड़ी में सब लोग दरवाजा खोल के रखते हैं कि भाई स्वामी जी क्या है, मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, तो आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील, अरे भाई बहुत हो गया, मेरी गाड़ी में बैठ के सफर किया तो ये गाड़ी में बिठा दो ना, 24 घंटे वो चलता रहेगा आपके भीतर से, समझ में आता है? ऐसा विचार करो, दे दो ना उसको, ये मन तुझे दे दिया, ओ लॉर्ड ऑलमाइटी, आई गिव दिस माइंड टू यू, तुझे उसमें से जो वासना जो विचार तुझे जहां जो विषय में जाना है, तो संकल्प विकल्प तुझे जो करना है तू करता रहे, आई गिव इट टू यू, यूज माय कार, लो मेरी गाड़ी, तूने मुझे बहुत दिखाया, बहुत दिया, मैं तुझे देता हूं, हाँ ये मेरी बुद्धि, तुझे दो निर्णय लेना है वो तू ले ले, यूज दिस करण। तो आपके मन से बुद्धि से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपका नहीं, वो परमात्मा का होगा। अब आपको कहां जाके पता लगेगा कि ये जो कोई संत है ज्ञानी है उससे बात करना व्यवहार करना कुछ भी करना उनके आशीर्वाद पाना इतना महत्व का क्यों है? क्योंकि उसने वो दे दिया है उसको बुद्धि को निर्णय को। अब उसके मुख से जो निकल गया ना वो उसके मुख से निकला हुआ होता है, दिखता है कि ये शरीर बोला, हाँ पर बोलता कौन है उसके भीतर से, क्योंकि उसने तो दे ही दिया है, ये सब दे दिया तो एक ही जागृत अवस्था का लय है, तो ये तो मस्त है ना, आत्म साक्षात्कार का फर्स्ट प्री रिक्विजिट है कि ये सब दे दीजिए। तो जो कोई उसमें से वाणी निकल भी गई ना तो वो होके ही रहती है वो इस प्रकार, क्योंकि उसने बोल दिया है, उसने निर्णय ले लिया है, आप सीधे उस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए दर्शन करके आनंद आता है, संग से आनंद आता है इस प्रकार, क्योंकि वो दिया हुआ है तो उसके भीतर से वही निकल रहा है, उसकी दृष्टि भी हम पे पड़ जाती है ना, संपर्क करते हैं क्यों करते हैं, उसकी दृष्टि भी हम पे पड़ गई तो सोचना कि उसकी दृष्टि में से तो वो देख रहा है, तो अगर इसने मुझे देख लिया तो वो उसी ने मुझे देख लिया है, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसने मुझे सुन लिया, क्योंकि परमात्मा को डायरेक्ट तो आप मिल ही नहीं सकते ना, पर जिसने कान उसको दे दिए हैं उसने मेरा एक शब्द भी सुन लिया ना तो उसके भी उसके अंदर गया वो, उसको मैंने स्पर्श किया तो उसको स्पर्श हो गया, क्योंकि पूरी जो स्पर्श की इंद्रिया है वो उसने दे दिए कि ये हाथ भी मैंने तुझे दे दिए, ये स्पर्श भी मैंने तुझे दे दिया, तुझे जाके जिसको छूना है उसको छू ले, इट इज योर्स। तो पाप पुण्य करने की तो कोई वो ही नहीं है, वो लीला मात्र हो जाती है, पूरा जीवन लीला मात्र हो जाता है, पूरा जीवन एक आनंद हो जाता है, हा? एक मस्ती हो जाती है, क्योंकि वो जी रहा है, तो वो परमात्मा को आपके भीतर ऐसे जीने दीजिए, तो आप यही इसी वक्त वो हो जाएंगे, क्या बाकी रहेगा वो सब आ जाएगा। तो इतना कर लिया, ये पराकाष्ठा भक्ति की आ गई, तो ये पूरी जो आपकी जागृत अवस्था है वो लय हो गई। इतनी बात उसकी सुनने पर भी आप बताइए मुझे, ये क्षण में आपको कोई भी विषय का विचार आया भाई? सब अपनी अपनी चिंताओं में से आए हैं, ऐसा नहीं है वो अभी अखरी, वो अभी आके खड़ी रही, शारीरिक दुख भी है कि कहीं को है, आया बीच में कुछ नहीं आया, उसको समर्पण करने की बात भी मुझे बड़े अनर्थ करने से अगर रोक दे सकती है, ये समर्पण की शक्ति इतनी है, मैं उसे समर्पण समर्पित जब हो जाऊंगा तो होगा क्या, यह आनंद इतना होगा आप झेल ही नहीं सकेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड दैट थिंग। शुरू कर दीजिए बस, अब ज्यादा तो उपनिषद कोई बोल ही नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है, तो इतना कर लीजिए बस, तो ये जागृत अवस्था का लय हो जाएगा, पूरी जागृत स्टैंड स्टिल सब चला जाएगा, सब दुख चला जाएगा, कोई जादू नहीं है यहाँ, इट इज अ फैक्ट। ये जागृत अवस्था के बाद उसका लय अब कहाँ कहा, अब क्या बचा, अब अनुभव कहाँ है, तो बोले स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में क्या है, स्वप्न अवस्था में जो सूक्ष्म भोग कर रहा है, तो स्वप्न अवस्था का सूक्ष्म भोग जिसने किया वो कौन कर रहा है, तो बोले मन कर रहा है, हाँ मन ही ये स्वप्न अवस्था को उत्पन्न कर रहा है और अलग अलग भोग भोग रहा है, पर मन तो मैंने किसको दे दिया, मन वो परमात्मा को दे दिया, तो जो भी स्वप्न रात को देखते हैं वो देख रहा है, ही इज वॉचिंग दैट टीवी। हम तो दिन में वो टीवी देखते हैं ना, वो तो रात को भी टीवी देखता है। हाँ, तो तुझे जो देखना है वो देख, आई गिव इट रिमोट कंट्रोल, उसको दे दो और कुछ नहीं, टीवी आपका, रिमोट उसका, हाँ उसको दे दो भाई, तुझे जो देखना है वो देख। तो स्वप्न में भी वो वही जुम्बन कर रहा है, वही देख रहा है, तो वही देख रहा है तो उसका जो अटैचमेंट है वो भी चला जाएगा और वो स्वप्न अवस्था भी अपने आप लय हो जाएगी। ये कोई ठोस लय नहीं है, ये लय का चिंतन भी नहीं करना है, ये अवस्था को प्राप्त किया तो लय अपने आप प्राप्त हो जाता है। और ये जो जागृत और स्वप्न अब तो खाली लग रहा है, कुछ है ही नहीं, हाँ तो ये खाली लग रहा है, कुछ है ही नहीं, कोई भोग ही नहीं है, उसकी ठोस स्थूल जो अवस्था है वो कैसी है, कुछ नहीं लग रहा है, वो अवस्था कैसी है, सुषुप्ति अवस्था है। तो सुषुप्ति अवस्था जो है उसमें क्या है, अभावात्मक आनंद है। सुषुप्ति अवस्था डीप स्लीप जो है उसमें आनंद तो है, वो अभावात्मक आनंद है, पर वो जो अभावात्मक आनंद है उसका भी लय कर देना है, किसमें, वही परमात्मा ने कि सुषुप्त आनंद भूख, इसलिए उसको भूख नाम दिया है। और वो आनंद भूख कब बनेगा, वो स्थूल भूख कब बनेगा, वो सूक्ष्म भूख कब बनेगा, भूख यानी खाने वाला, भुगतने वाला, अभी आपको पता लगेगा, जब आप समर्पित हो जाएंगे तब भी आपको ये उपनिषद के शब्द सार्थक लगने लगेंगे कि वो कैसे भोग रहा है, नहीं तो आप तुरंत तर्क करेंगे। जो तर्क करने को आपको ना बोला गया है वो तर्क फिर से उठ जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान भुगतने वाला है, ऐसे भुगतेगा आपके भीतर जब आप दे देंगे, हाँ तब वो भुगतने वाला बन जाएगा, ये समर्पण। ठीक है, तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अब ये आत्यंतिक जो लय है, लय तो करना है, आत्यंतिक लय करना है, यानी जागृत अवस्था में जो भी कोई भोग, अब वो जो भोग भुगत रहा है, अब कॉमन फैक्टर निकालना है, वही स्वप्न में जाके भुगत रहा है, वही सुषुप्ति में आनंद का भोग कर रहा है। और कहीं पंचदशी में आता है कि कहीं शिष्य ने पूछा कि हे गुरु, ये आत्म साक्षात्कार जो है, ये ब्रह्म का जानना है, वो जो जानता है उसे होता क्या है, मुझे उसकी निशानियां बता दीजिए आप। तो बोले कि मैं बहुत आगे सोच लू ना, तो भी मैं अंत में खींच खींच के मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन आत्म साक्षात्कार का, हे शिष्य तू मुझे बहुत प्रिय है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब तेरी जागृत, देखो मैं बता तो नहीं सकता हूँ पर नियरेस्ट पॉसिबल मैं आपको इतना कह सकता हूँ, गुरुजी कहते हैं कि जब तेरी जागृत अवस्था सुषुप्ति जैसी हो जाए, यानी तू जागता है, पूरा सभान है और अवस्था कैसी है, सुषुप्ति जैसी हो जाए, ये नियरेस्ट डिस्क्रिप्शन है आत्म साक्षात्कार का, नियरेस्ट डिस्क्रिप्शन, इससे ज्यादा नियर नहीं आ सकता। पूरा आप जो जाग रहे हैं इज इक्वल टू सुषुप्ति हो जाए, यानी सुषुप्ति अवस्था में क्या है, कोई भी स्थूल भोग नहीं है, सूक्ष्म भोग नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, देहाध्यास नहीं है, मैं ये शरीर मन बुद्धि का संगात हूँ वो वहां नहीं है, पर वहां क्या है, वहां ये सब नहीं है, वो जानने वाला भी नहीं है वहां, प्रज्ञात्मा जो है, जो विज्ञाता है वो वहां जानने वाला नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में वो जो जग रहा है ना तेरे भीतर, जो ये सब कुछ देख रहा है कि ये नहीं है वो है, वो ये अयम है और ये चतुष्पात है, ये आत्मा है, ये तुरीय है, ठीक है, और वो तू है अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात, ये चतुष्पात ब्रह्म इस प्रकार कहा है। जो रुपये के सिक्के की बात की, कच्चापन की बात की, कि उसमें चारों चवन्निया आ जाती है, कहने का तात्पर्य रुपया यहाँ से यहाँ गया तो चारों चवन्निया यहाँ गई कि नहीं, कहने तीनों अवस्था और तुरीय जो चौथा अनुभव करने वाला है वो गया, रुपया यहाँ गया तो भी ये गया, इसे हम कैसे समझे भाई, ये चारों सब जाते हैं, अब इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ इतना ही कहना है कि रज्जू जो है वो सर्प की संभावनाओं के साथ सब जगह घूमता है, आप रज्जू को बैग में लेके घूमते हैं तो वहां सर्प भी जाता है उसके साथ साथ, हाँ सर्प की संभावना तो उसके साथ ही जाती है भाई, समझ में आता है। इसी प्रकार आप अयम आत्मा ब्रह्म है, आपको प्रत्येक आत्मा है, पर आपके ऊपर अज्ञान काल में जैसे सर्प आता है, ऐसे अज्ञान काल में मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसी संभावनाएं चलती ही चली जाती है। और सर्प का लय क्या होता है, सर्प का लय कब होता है, जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ऐसे आपके भीतर का प्रत्येक आत्मा जो है, आपके भीतर का जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब मैं शरीर हूँ, ये मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसी संभावनाएं हमेशा के लिए चली जाती है। और ये जो संभावना का चला जाना, यही है परमात्मा का मिलन, और वही है आत्म साक्षात्कार, वही है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी प्रत्येक आत्मा जीवात्मा ब्रह्म, यही है अहम ब्रह्म अस्मि, यही है परमात्मा का, यही है महावाक्य का आद तत्व तत्व। परमात्मा और गुरुजनों की कृपा से हम उसे प्राप्त करें, बस ऐसे ही परमात्मा से प्राप्त। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

हरि हरि ओम। सब अपने आंखें बंद ही रखिए। ओम का उच्चारण होगा। परमात्मा को प्रार्थना के अब ये उच्चारण करने वाला ही तू ही बन जा। ओम का उच्चारण के ऊपर जो ध्यान दे रहा है वो प्रज्ञा भी वही पर ब्रह्म है। अनुच्चारण पे ध्यान देने वाला भी वही ब्रह्म है। और ये दोनों पे ध्यान देने वाला चतुष्पाद वो जो तुरीय वही वही ब्रह्म है। मेरे भीतर ही ये सब कुछ हो रहा है। हम यहाँ से उच्चारण करवाएंगे, उसके बाद आप कीजिए। हम यहाँ से आंख खोलने को कहेंगे तब भी आंख खोलना, और कोई किसी से कुछ बात किए बिना शांति से अपने कार्य में लग जाना।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। In this, you are about to listen Bhujanga Stotram, presented by Vedamantram.com team. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव स्तोत्रम। द टाइटल इज शिव सहस्र नामावली फ्रॉम स्कंद पुराणम, presented by Sri Subramanian Sharma, Chennai. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Skanda Puranantargatam Vasishtha Arundhati Samvada Rupam Shiva Sahasranama Valihi. Om Shri Shivaya Namaha.

ॐ वृषध्वजाय नमः, ॐ वृषारूढाय नमः, ॐ वृषकर्त्रे नमः, ॐ वृषेश्वराय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्रजनयेनमिति सत्प्रजापदये सुजमदधात् सोऽसोऽच प्रजामिच्छमानः सत्माद्यम् च प्रजाभुनक्तिरञ्जना सार्वभूतो जलप्रजामिच्छमानः।

आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक सायं 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी के 71वां श्लोक आरूढ़ भक्त

युक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघ निर्जित्य किल्विसरिपुन् विजयी सुधीन्द्रः।

ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तम प्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वर नाम मन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्महते शिवते कृतार्थः भूदारता मुदवहाद्यतदपेक्षया श्री भूदारयेव किमत सुलभे लवस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य आशा

आशाशाटि कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु। तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं, और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है, एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदास्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है, उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते, क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए। इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं।
यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता, अनुपयुक्त होता, खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते। हुए कि नहीं बोलो? इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है। ध्यान रखना, इसलिए उसके चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहोगे नहीं महाराज, मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से, और क्या, वो काम तुम कर लिया करो। महाराज तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है? महाराज हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना, भक्तों के दिल को चुरा के ले आना। चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां। और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल। तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो। तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, है? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी। हर काम है परमात्मा में, इसलिए वह सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे, और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिलचरत्वम नास्ति मयि देव। तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है,

कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए। चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा मैं, विभूषण ही बनूंगा। कुटिलचारत्व तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिर राजलक्ष्मी। इस श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक यह है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी, शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्यलक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रुओं ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता। 900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। और लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी, तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है, तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है बाबा। रूपक है उस राजा, एक राजा

0: स्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राजलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्यलक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्यलक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्यलक्ष्मी आध्यात्मिक राज्यलक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्यलक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्यलक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्यलक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। ये अर्जुन, तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते। ये तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे, तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात्तम इंद्रियान्यादो नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

रावण ने भगवान से शिव को प्रसन्न करके, शिव भगवान की कृपा से रावण ने तीन लोग समस्त देवताओं में विजय प्राप्त की और लंका प्राप्त की भगवान शिव के प्रसाद से, भगवान शिव की कृपा से। इतना परम शिव भक्त है कि नित्य प्रति वो भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजन करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुंदर एक स्तोत्र की रचना की जिसे शिव तांडव कहते हैं, रावण कृत शिव तांडव। सुंदर स्तुति से भगवान शंकर को रावण ने प्रसन्न किया। तब रावण के भगवान की महिमा, भगवान शिव के प्रसाद से कुबेर धनपति बने, रावण को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। जिस ऐश्वर्य के साथ उसने समस्त नौ ग्रहों को अपने यहाँ आधीनस्थ कर लिया था, शनि महाराज को भी जिसने अपने राज्य में बंद करके रख लिया हो, इतना बड़ा बल रावण को प्राप्त हुआ कि वो कैलाश पर्वत को ही भगवान शिव सहित उठाकर अपने हाथ में लेकर लंका की ओर प्रस्थल पड़ा। इतना पराक्रम ये रावण को प्राप्त हुआ तो बोले भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। कहा कि शिव महिमा, भगवान शिव का जो ऐश्वर्य तवाश्वर्यम, उनका ऐश्वर्य अद्भुत है। ऐसे भगवान शिव जो नागों का

हार धारण किए हुए हैं, तीन नेत्र हैं, नित्य हैं, भस्म अंग में लगाए हुए हैं, ऐसे भगवान महेश्वर। महेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव, जो अत्यंत तृप्त हैं, अनादि हैं। ऐसे भगवान महेश्वर नित्य हैं, शुद्ध हैं, दिगंबर हैं, और उनको नौ नौ नौ नौ पांच बार केवल नकार से भी भगवान शिव, केवल एक अक्षर न, इसको भी आप जप कर लें, क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है न न न न न न न से अभिप्राय क्या है, ये नयति न, नेति नेति नेति नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, जल भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं, आकाश भी नहीं, अर्थात ये पंचभूत नहीं। नहीं के बाद जो रहा, नहीं नहीं कहने वाला जो रहा, वो कौन? बोले वही तो शिव है। मैं, कोई ये कहे कि मैं पंच तत्व नहीं, पंच तन्मात्रा नहीं, पंच प्राण नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं, पंच कर्मेन्द्रिय नहीं, पंच कोश नहीं, जब ये नहीं है तो आखिर नहीं है ऐसा कहने वाला तो है ना, जो इनको नकार रहा है नेति नेति के वचनों के द्वारा, नेति नेति शब्दों से, जो नौ नौ नौ नौ कहकर, जो इसको नेति नेति के वचनों के द्वारा जो प्रकट कर रहा है, आखिर वो कौन? बोले वही तो शिव है, वही शिव विशुद्ध शिव है। और वो भगवान शिव कैसे?

राय। ये भगवान मंदाकिनी, मंदाकिनी कहते हैं गंगा को, गंगा त्रपद गामिनी, गंगा का एक नाम है त्रपद गामिनी, ये तीनों लोकों में, स्वर्ग में रहने वाली स्वर्ग गंगा, जिसे स्वर्ग गंगा का नाम क्या जानते हैं, ब्रह्म द्रव जिसे कहते हैं, और दूसरी भू गंगा जो इस पृथ्वी में भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है, ये भू गंगा है, और तीसरी गंगा पाताल में रहती है जिसे पाताल गंगा कहते हैं। गंगा को इसीलिए कहा त्रपद गामिनी, ये तीनों लोक में है, ब्रह्म लोक में जो गंगा है उस गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसे स्वर्ग गंगा कहते हैं, और दूसरी जो भूलोक में रहने वाली गंगा है इनका नाम है भागीरथी गंगा, और तीसरी जो पाताल में रहने वाली गंगा है वो पाताल गंगा है। इस प्रकार गंगा के तीन नाम है, गंगा जी का ही नाम मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी नाम रूपी गंगा कहाँ रहती है, बोले भगवान शिव के मस्तक में, जटाओं में रहती है, भगवान शिव के मस्तक में गंगा निवास करती है। बोले क्यों, भगवान शिव की इसके साथ एक बड़ी सुंदर कथा जुड़ी हुई है जो समुद्र मंथन से के साथ में। भगवान शिव ने विष पिया, विष आया कहाँ से, बोले समुद्र मंथन से। यदि ये मंथन की बात थोड़ा सा विचार करो तो मुझे ऐसा लगता है कि मन का अवरोधन करना, मन का अवरोधन कर, मन को रोकना समुद्र को बांधने से बढ़कर के और कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे कोई समुद्र को बांध ले वैसे ही इस मन को का अवरोधन कर लेना है, मन को रोकना है। और समुद्र मंथन क्या है, बोले ध्यान में समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त कर लेना, ये सागर मंथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात ध्यानस्थ समाधिस्थ स्थिति को ही मंथन की स्थिति कहा गया है। जब तक वो स्थिति, यूं तो ध्यान और मनोनिरोध, मन का निरोध करना, क्योंकि एक जन्म से नहीं कई जन्मों से हमारा मन निरंतर संसार के साथ दौड़ रहा है। जगत प्रपंच में ये मन ऐसा लगा हुआ है, और प्रपंच है भी क्या, यत्र यत्र मना तत्र तत्र प्रपंच, जहां जहां आपको मन दिखाई पड़ता है उसी का नाम प्रपंच है, अर्थात संसार है। मन, ऐसे मन को रोक लेना समुद्र बांध लेना है, समुद्र पर बांध लेना जैसे ही है। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के सागर मंथन किया, और ये मंथन करने से भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के, जो सागर मंथन किया, और सागर मंथन करते हुए समुद्र में से हलाहल नामक विष निकला। जब भगवान शिव अंजलि में उस विष का पान करने लगे, अर्थात उस विष को कंठ में उतारा, उदर में जाने से माँ पार्वती ने रोक लिया, उमा ने रोक लिया, उधर मैं नहीं जाने दिया, और वो कंठ में ही रह गया। जब भगवान ने विष पान किया हाथ में कुछ छींटे रह गए, क्योंकि शायद हो सकता शंकर जी के पास उस समय रुमाल न हो जो हाथ पहुंच ले, भगवान ने वो छींटे मारे तो थोड़ा सांप ने ले लिया, थोड़ा बिच्छू ने ले लिया, वो छींटे उनके मुंह में चले गए तो इनमें भी ये विष आ गया। ऐसी एक कथा जुड़ी हुई है। भगवान शंकर ने जैसे उस विष को कंठ में अवरोधन किया, रोका, तो उसकी गर्मी कहाँ चली गई, बोले मस्तक में चली गई।
अब गर्मी जब मस्तक विष की दाहकता मस्तक पर पहुंची तो भगवान शिव ने और एक तरफ आग मस्तक में प्रलयंकर अग्नि ललाट में और सिर के ऊपर विष की गर्मी, तो देखा कि भगवान शिव को बहुत कष्ट हो रहा है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म द्रव अर्थात वामन अवतार के समय भगवान के पादुका को पाद अंगुष्ठ को धोकर वो धोवन जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा था वो भगवान शिव की ओर जल जटा में डाला, जिससे कि भगवान के मस्तक पर वो विष की दाहकता समित हो शांत हो। तब से भगवान शिव को जलाभिषेक की परंपरा चल पड़ी। भगवान शिव के ऊपर जल जितना जल चढ़ाओ बोले उतना ही भगवान को वो मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शीतलता मिलती है। तो कहा मंदाकिनी सचिल, ये जो जल है भगवान शिव की जटा में मस्तक पर है, ब्रह्म द्रव है ब्रह्मा जी के द्वारा जो कमंडल में रखा गया था वो भगवान शिव की जटा के ऊपर गंगा के समान अखंड रूप से वो जल भगवान शिव के मस्तक पर आया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के इस विष की दाहकता को स्मित शांत करने के लिए भगवान के शरीर पर क्या लगाया गया, चंदन लगाया गया। भगवान शिव के मस्तक पर चंदन सलिल चंदन चर्चित आया, चंदन से ये श्रीखंड चंदनम पुण्यम, इसका नाम है श्रीखंड, माने श्री शोभा, श्री सुंदरता, श्री शीतलता, सुशांतता। अर्थात चंदन को लगाने से क्या मिलती है, शोभा मिलती है। भगवान शिव के शरीर पर मस्तक पर चंदन लगाया गया और इस चंदन से भगवान की इस विष की जो दाहकता थी उस पर शीतलता मिली, ठंडक मिली, सुशांतता मिली, भगवान को शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा चंदन भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चंदन भगवान श्री हरि भी लगाते हैं।

कर्णम। भगवान श्री हरि अपने शरीर पर सारा चंदन लगाते हैं। जानते हैं ये चंदन क्यों लगाते हैं? भगवान श्री हरि नारायण जगत के कल्याण के लिए आज भी बद्र का आश्रम में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तप करते करते जो तप की अग्नि है अर्थात तप का तेज है उनके शरीर पर बढ़ रहा है, उससे गर्मी बढ़ रही है। निश्चित रूप से जो तपश्चर्या करते हैं और जो इष्ट की आराधना करते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर का टेम्परेचर हमेशा 105 रहता था। उनके शरीर में हमेशा, क्योंकि तप से, ब्रह्मचर्य और तप दोनों के बढ़ने से शरीर में उष्णता बढ़ती है। उस उष्णता को, उस तेज को शांत करने के लिए, शीतलता देने के लिए चंदन का आलेप लगाया जाता है। आपने कभी भगवान बद्रीनाथ का श्रृंगार दर्शन किए हो तो आपने देखा होगा कि रावल जी पहले उनके सारे शरीर में चंदन लगाते हैं, फिर भगवान को वस्त्र धारण कराते। कहा कि ये चंदन किस लिए? उनके शरीर में जो तप का तेज है, उष्णता है, वो शांत हो, शीतल हो, सुशांति का उन्हें आनंद। और ये भगवान शिव के मस्तक पर चंदन उनको शीतलता देने वाला है। भगवान शिव शांत हैं, शीतल हैं, अर्थात ये चंदन भगवान ने मस्तक पर धारण किया हुआ है। गंगा की धार सिर पर है और चंदन उनके मस्तक पर चर्चित है। नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वर, नंदीश्वर भगवान के कपर्दिनी नामक ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे नंदी। नंदी को ये कहा था कि 16 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी। नंदी को जब अपनी मृत्यु का पता लगा तो ये तप करने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया, तपस्या करने के लिए। भगवान शिव की तपस्या करते हुए भगवान से वरदान प्राप्त करके नंदीश्वर भगवान शिव की तपस्या करते हुए इसी मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र पूर्व में देवर्षि नारद ने पार्वती को दिया था, यही मंत्र नंदीश्वर ने जप किया था, यही मंत्र रावण ने जप किया था, यही मंत्र कुबेर ने जप किया था, यही मंत्र बलिपुत्र बाण ने जप किया था। इस प्रकार भगवान शिव इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का जप करते हुए नंदीश्वर ने बहुत समय तक तप किया, जप किया और भगवान शिव के प्रथम गण के रूप में उन्होंने स्थान प्राप्त किया तपश्चर्या से, तप करके ये दिव्य स्थान नंदीश्वर को प्राप्त हुआ। जब इनकी मृत्यु निकट आई, जैसे मार्कंडे ऋषि ने, भगवान मृकंड पुत्र मार्कंडे ने अपनी मृत्यु को नजदीक देखकर, यमदूतों को पास आते देखकर भय से शिवलिंग का आलिंगन कर दिया था और जब शिवलिंग पर मस्तक रखकर शिवलिंग को दोनों हाथों से बांधे हुए भय से शिव का आश्रय लिया, भगवान शिव कपर्दिनी के रूप में प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल लेकर यम दूतों को भगवान शिव ने दूर किया था। मार्कंडे की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। मृकंड ऋषि के पुत्र हुए हैं, इनकी आयु केवल बहुत छोटी है। पिता ने बाल्यकाल से ही इन्हें ये समाचार ये बताया है कि बेटा अपने से बड़े गुरुजन कोई मिले तो उनके चरणों में प्रणाम कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना। एक बार सप्त ऋषियों को इन्होंने
प्रणाम कर लिया। ऋषियों के मुंह से अनायास शब्द निकल आए, जब कोई चरणों में दंडवत झुक जाता है तो वाणी उसे आशीष देने के लिए किसी की आज्ञा नहीं मांगती है। आशीष हृदय से निकलता है, उसके लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। किसी को आशीर्वाद देने के लिए किसी से आज्ञा मांगनी नहीं पड़ती, इसे आशीर्वाद दें कि नहीं दें, वो तो स्वतः हृदय से निकलकर बाहर आता है। परंतु आशीर्वाद लेने के लिए वो पात्रता तो हो। बोले आशीर्वाद किसको प्राप्त होता है, जो अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, जो चरणों तक झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, वृद्ध जनों के चरणों में, पूज्य जनों के चरणों में झुकना चाहिए, उनके चरणों को छूना चाहिए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है वो अंगुलियों से प्रवेश, प्राण शक्ति का संचारण इन अंगुलियों से होता है, और हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो जाकर पृथ्वी में अर्थ होती है किससे, पांव की उंगलियों से, पांव से। इसलिए कहा प्रपद्धे चरणों को पंजे को पकड़ना चाहिए, पांव के पंजे को पकड़ लो। इसीलिए कहा कि जब भगवान के गुरुजनों के चरणों के पंजे को आप पकड़ लेंगे तो आपके शरीर में उनकी ऊर्जा अर्थात उनका तप, उनका आशीर्वचन, उनका ज्ञान आपके अंदर स्वतः अर्थ हो जाएगा, तब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहा कि ये चार चीज, वृद्धो सेवति नित्यता, नित्यता जो वृद्ध जनों की सेवा करता है उसे चार चीज बिना मांगे मिल जाती हैं। बोले क्या, आयु बल यश और विद्या उसे मिल जाती है। मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम कर लिया, उनके मुंह से अनायास शब्द निकल आया चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव आशीर्वाद जब मिला बालक ने की ओर देखा तो उसके मस्तक पर तो ये सब कुछ भी नहीं। तब वो ब्रह्मा जी के पास लेकर गए, ब्रह्मा जी से के मुंह से भी यही शब्द निकला, तब उन्होंने भी आशीर्वाद चिरंजीवी होने का दिया। कहा महाराज इसकी तो आयु ही बहुत थोड़ी है, 7 वर्ष की है। तब ब्रह्मा आदि देव ने उन्हें कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की कृपा से तुम्हें दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की आराधना की मार्कंडेय ने, और भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घ चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान शिव ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही नंदीश्वर की कथा है कि नंदीश्वर ने भी मृत्यु का जब भय लगा तो वो भगवान का भजन करने लगे, भगवान शिव की शरण में चले गए, और उनकी शरण में जाकर भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घ जीवन अर्थात प्रथम गण की पदवी प्राप्त हुई है। ये नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय, महेश्वर के भगवान शिव के प्रथम बने। आयु बहुत लंबी हो या बहुत छोटी हो बहुत चिंता का विषय नहीं है, नारा मेरा अपना मत है इसके लिए बहुत चीज, पर जितना हमारे पास समय है उसका सही उपयोग। आयु की बात तो ये है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों में युद्ध हुआ, असुरों ने देवलोक छीन लिया, इंद्र भाग रहे हैं, हिमालय देवता आदि सब हिमालय की ओर मोह किए हुए, हिमालय की ओर जा रहे। जब हिमालय की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक महात्मा मिले। महात्मा कैसे मिले, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर खाट रखा हुआ था, अपने खाट को सिर पर रखे हुए एक महात्मा मिले। तो जैसे उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया इंद्रादि देवताओं ने, उन्होंने तुरंत अपने सिर से खाट उतारी, उसे बिछाई और उसमें बैठ गए।
उनके छाती के आधे बाल गिरे हुए थे। इंद्रादि देवताओं ने उनसे पूछा, महाराज आपके ये छाती के आधे बाल कैसे गिरे हुए? कहा कि हाँ, जब एक कल्प बीतता है तो तब मेरी छाती का एक बाल गिरता है। जानते हैं इस ऋषि महात्मा का नाम क्या है? लोमस ऋषि। इनका नाम है लोमस ऋषि। एक कल्प बीतने पर एक छाती का बाल गिरता है, आधे बाल गिर गए हैं। लोमस ऋषि कहते हैं एक कल्प बीतने पर मेरे छाती का एक बाल गिरता है। और एक कल्प कितना बड़ा? 4,32,000 वर्ष का हमारा कलयुग है और उसका दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग, 71 बार चतुर्युगी बदलती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा का एक वर्ष होता है तब एक कल्प होता है, और उस कल्प में, एक कल्प में 14 मनु का राज्य चलता है। तो एक कल्प में एक बाल गिरता है लोमस ऋषि का, और वो कहते हैं देखो आधे बाल तो मेरे गिर गए हैं, आधे रह गए हैं, मैंने सोचा घर बना करके क्या करूंगा, इसलिए मैंने अपने पास खाट रखी हुई है, रात को इसमें सो जाता हूँ, सुबह इसमें, रात को इस खाट में सो जाता हूँ, जब जाता हूँ तो सिर में रख कर ले जाता हूँ, दिन में बैठने का काम देता है, रात को सोने का काम देता है, इसलिए मैं अपने पास खाट रखता हूँ। तो लोमस ऋषि जिनकी इतनी बड़ी आयु है उनको वो कहते हैं कि आधी तो निकल गई, आधी अब रह गई, इसके लिए कहाँ घर बनाओ कि झंझट में पड़ूं, इसलिए मैंने घर वर नहीं बनाया। जिनकी इतनी बड़ी आयु है उन्हें घर की चिंता नहीं है, और हमसे कोई पूछे पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। इतना अनित्य, इतना क्षणभंगुर और इतना छोटा हमारा जीवन, और उसमें हमें चिंताएं कितनी बड़ी बड़ी है, कभी घर की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, कभी किसी चीज की चिंता, चिंता चिंता चिंता इतनी हमने बना ली है कि चिंता चिता समान, जिनमें हम चिंतित होते जा रहे हैं। पर याद रखना नारायण, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके पास चिंता नहीं होती है, चिंतन होता है। वो तो चिंतन को अपनाते हैं, चिंता को नहीं। उनके भीतर निरंतर प्रभु चिंतन बना रहे। चिंतन माने उनका याद बनी रहे किसी न किसी रूप से। उनका हृदय भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वो कभी अपने आप को भगवान से अलग नहीं करते। इस प्रकार नंदीश्वर भगवान के प्रथम गण हुए हैं भगवान शिव की पूजा जब तक नंदीश्वर के साथ नहीं होती। भगवान शिव अनुग्रह करने में, मैंने कल आपको कहा था कि भगवान शिव अनुग्रह करते हैं, अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। दया करना, अनुग्रह करना, कृपा करना, ये भगवान शिव का स्वभाव है।

भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कौन भक्त जो उनकी शरण में आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते ये असुर है, देव है, मानव है, पशु है, कौन है, भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका हृदय कैसा है, ये मेरी कैसी, मुझसे कितना स्नेह करता है, भगवान उसी पर कृपा कर देते हैं। भगवान शिव की अष्ट मूर्तियां हैं, आठ मूर्तियां हैं भगवान की, जल मूर्ति, मृणमय मूर्ति, वायुमय मूर्ति, वायुलिंग है, अग्निलिंग भी है, आकाश लिंग भी है, सूर्य लिंग भी है, चंद्र लिंग भी है, और यजमान मूर्ति, यजमान के रूप में भी भगवान शिव ही है। ये समस्त अष्ट मूर्ति भगवान शिव की हैं, पांच भगवान शिव के मुख हैं, अष्ट मूर्ति हैं, और इन रूपों में भगवान शिव हैं। कहा कि हे नाथ, मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, भगवान शिव मंदार आदि पुष्प, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र, इन पुष्पों को बड़े संभाल करके, अपने मस्तक से लगाकर, आंखों से लगा करके, आदर के साथ इनको ग्रहण करना चाहिए। नारायण, ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव में चढ़ा हुआ शिव निर्माल्य कहीं हमारे पांव में न लग जाए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुष्प दंत की, महिमन स्तोत्र की रचना जिन्होंने की है उनका नाम है दसन, दसन नामक, जिनका नाम है पुष्प दंत नामक गंधर्व, एक गंधर्व हुए हैं जिनका नाम था दसन पुष्प दंत। वो क्या करते थे, प्रतिदिन राजा के बगीचे में जाकर जो सुंदर सुंदर फूल होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के वो फूल बिना बताए सूक्ष्म रूप से जाकर वो फूलों को तोड़ लेते, तोड़कर अंतर ध्यान हो जाते, रोज फूल चोरी करते थे। राजा ने सोचा कि राजा के सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, महाराज बगीचे में फूल तो खिलते हैं, राजा के पास फूल नहीं पहुंचते हैं, तो फूल तो खिलते हैं पर ब्रह्म मुहूर्त में आकर कोई चोरी कर ले जाता है, और वो चोर पकड़ में नहीं आता है क्योंकि उन्हें अंतर ध्यान होने की विद्या आती थी, पकड़ में नहीं आता, राजा को फूल नहीं मिलते श्रृंगार के लिए। एक दिन राजा ने युक्ति की, कहा कि देखो जिस रास्ते से वो बगीचे में जाएं, उस मार्ग में शिव निर्माल्य माने शंकर जी में चढ़े हुए फूल, पत्तियां, चावल, जो कुछ भी है शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ है उसे रास्ते में बिखेर दो, जब उसे वो उलांग लेंगे, उसे नांग करके चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा शंकर जी की पूजा करने के लिए राजा को फूल नहीं मिलते थे, तो उन्होंने वो शिव निर्माल्य बिखेर दिया। जैसे ही पुष्पदंत ब्रह्म मुहूर्त में गए, वापस फूल लेकर जब अंतर ध्यान होने लगे, तो शिव निर्माल्य उनसे लांघा गया, और ये दोष हो जाने के कारण उनके अंतर ध्यान होने की विद्या समाप्त हो गई। समाप्त हो जाने पर अब तो पुष्पदंत सोचने लगा, मन में विचार करने लगा कि राजा के पास जाऊंगा वो मुझे दंड देंगे, और भगवान शिव के पास जाऊंगा क्योंकि अपराध मैंने जिस पर जिसका किया है, यदि मैं उसी की शरण में जाऊंगा तो वो मेरे पर कृपा करेंगे। राजा के पास जाने पर दंड मिलेगा, भगवान शिव के पास जाने पर उनकी कृपा मिलेगी। पुष्प दंत ने भगवान के लिए स्तुति करना आरंभ किया, वही महिमन स्तोत्र है, महिमन स्तुति है। पुष्प दंत ने स्वयं अपने आप से सुंदर श्लोकों की रचना करके भगवान शिव को प्रसन्न करना आरंभ कर दिया, और वो
भगवान शिव उन पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, जिसका अपराध हो जाने पर भी शिवा अपराध हो गया, उनकी शरण चले गए, भगवान ने उन पर कृपा कर दी। इसलिए कितना बड़ा है अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते, हजारों हजारों अपराध होने के उपरांत भी यदि उन अपराधों को छोड़कर भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं तो भगवान शिव उन पर कृपा कर देते हैं। ऐसे कृपालु देव और कोई नहीं है, शंकर बड़े कृपालु हैं, शंकर बड़े दयालु हैं। ऐसे दयालु शिव की हम सब शरण लें, वो हम सबों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।

परम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आपको जो दिया गया है उसमें दूसरे पन्ने में अंत में देखिए, ग्यारहवां श्लोक है ना, ये बचा के रखना, रोज नहीं मिलेगा। वट विटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम् सकल मुनि जनानाम् ज्ञान दाता रमारात् त्रिभुवन गुरुमीशम् तिदेवम् जनन मरण दुःख छेददक्षम् नमामि। इसके बाद में पीछे चित्रम वटतरोर्मूले, जोर से बोलो, चित्रम वटतरोर्मूले

शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नितये

यहां मंगलासनम है। क्या है? भगवान गणपति हमारा मंगल करे, भगवती सरस्वती हमारा मंगल करे, महेश्वर भगवान शंकर हमारा मंगल करे और पार्वती हमारा मंगल करे। गणपति के कृपा के बिना विघ्न पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए निर्विघ्नतया ग्रंथ समाप्ति के लिए हम गणपति को प्रार्थना करते हैं, मंगल मूर्ति हमारा मंगल करे। दूसरा गणपति का नाम है बुद्धि प्रदाता, वो बुद्धि भी प्रदान करने वाले हैं जिससे हमको विद्या समझ में आ जाए। दूसरा कहते हैं सरस्वती हमारा मंगल करे, मानी हमें विद्या प्रदान करे। या महेश्वरी पार्वती को भी प्रार्थना है और सरस्वती को भी प्रार्थना है। एक अर्थ कर सकते हैं सरस्वती हमें अपरा विद्या प्रदान करे और पार्वती जिसका वर्णन उपनिषदों में हेमवती ब्रह्म विद्या के रूप में है वो हमें परा विद्या प्रदान करे। दोनों देवियां गणपति विघ्न दूर करे, सरस्वती अपरा विद्या प्रदान करे और पार्वती उमा हमें क्या करे? परा विद्या ब्रह्म विद्या प्रदान करे और शंकर भगवान ज्ञान और वैराग्य के दाता है। ऐसे तो कहा है बाबा जी कुछ नहीं रखते पर जो भी चाहिए आपको देते हैं। और आशुतोष, आशुतोष मानी व्हाट? बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। विष्णु को जरा टाइम लगता है पर ये हमारे क्या है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष भगवान है। तो महेश्वर हमारा मंगल करे, महेश्वरी मंगल करे, सिद्धि विनायक मंगल करे और सरस्वती मंगल करे। मंगलम दिशतु मे विनायको, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदा शिव। ये मंगल शब्द का शास्त्र में किया गया है, ये धातु से बना है। मंगल शब्द मगी धातु से बना है, मगी सर्पणे, इसका अर्थ होता है सर्वोपि दुर्विधि अस्मात् अपसर्पति इति व्युत्पत्त्या। आत्म इंद्रिय कल्याणवाची, ये हमारे जीव के लिए और इंद्रियों के लिए कल्याणकारी है। कैसे? जो भी दुर्विधि है, जो भी अनिच्छनीय है, दुख रूप है, ये सबको हमसे अलग कर देता है। जैसे डॉक्टर रोग को रोगी से अलग कर देता है, ऐसे मंगल माने जो अनिष्ट है उसको हमसे अलग कर दे, हमें इससे मुक्त कर दे। इसे के आरोगताम, स्वास्थ्य क्या है? आरोगताम। इसी प्रकार से सब प्रकार के जो अनिष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रोग पराधीनता, ये सब दुखदायी है, वो सबसे मुक्त करे। मंगलम दिशतु मे विनायक। अब हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक मैं फिर से पढ़ूंगा और आप लोग के पास है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत भूतम यथा निद्रया।
साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम् निजान्तर्गतम् दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। तीन शब्दों पे विचार करेंगे। ये जो विश्व है विविध प्रत्यय गम्यम प्राप्तम विश्वम, ये वृत्ति रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं। मैं यहां बैठा हूं ये बात आपके विचार से आपको मालूम पड़ता है, यहां वृत्ति उदित होती है कि स्वामी बैठा है, तब स्वामी का बोध होता है। तो दुनिया की चीज शब्द स्पर्श रूप रस गंध वृत्ति रूप हमें ग्रहण होता है, इसको कहते हैं विश्वम। अब यहां कहा निजांतर्गतम, मन में जो दिखता है वो भी आत्मा को ही मालूम पड़ता है, और मन के बाहर जो है वो भी मन में ही स्फुरित होता है, और जो मन में स्फुरित होता है वो भी चैतन्य आत्मा में ही बाद बोध होता है ना। अब कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ये समग्र जगत दर्पण में जैसा दिखता है, आपकी बालकनी में आपने दर्पण लगा दिया तो दर्पण क्या करता है, करता नहीं होता है, उसमें बाहर की चहल पहल, बाहर के सूर्य चंद्रमा, बाहर के पहाड़ नदी, बाहर के जीव जंतु पशु पक्षी, बाहर का पानी, सब कहां दिखता है, वो दर्पण में दिखता है तुल्यम, ऐसे ही। अब आप देखिए दृष्टांत में कितना ग्रहण करना है कि जो दर्पण का जो सपाटी है जिसको कहते हैं दर्पण सरफेस जो है, उस दर्पण के अंदर ये नगरी गई है क्या, सूर्य चंद्रमा अंदर गए हैं क्या, देश काल अंदर गए हैं क्या, ना। और दिखने के कारण दर्पण में कोई विकार आ गया, सूर्य देखने से दर्पण दूसरा हो गया, पानी दिखने से बिक गया, और बाहर धूल दिखने से वो गंदा हो गया, नहीं, स्वच्छ, वो स्वच्छ ही है, अंदर दिखता है पर अंदर है नहीं, कोई पोल नहीं है कि अंदर सब प्रविष्ट हो गया, और जैसा बाहर है ऐसा ही भीतर दिखता है, फिर भी दर्पण कोई सी प्रकार का अपने में परिवर्तन किए बिना वो सबको प्रतीत कराता है। दृष्टांत इतना ही है, दर्पण

हिस्सा लगता है। मालूम पड़ गया। और मेरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखने से दर्पण में कोई विकार हुआ मुझे प्रतीति कराने के लिए, वो ज्यों का त्यों रहा और मुझे परावर्तित कर रहा है। तुल्यम निजांतर्गतम। इसी प्रकार से देखो, दृष्टांत दर्शन लीजिए। ये समग्र विश्व हर हमेश हमारे अंदर प्रतीत होता रहता है। ये जगत बाहर दिखता है पर मालूम कहां पड़ता है? किसके अंदर? चैतन्य आत्मा में ही मालूम पड़ता है। चैतन्य आत्मा में मालूम पड़ने पर भी, उससे अभिन्न होने पर भी, चैतन्य आत्मा में कोई विकृति आती है, कोई फेरफार होता है, कोई परिवर्तन होता है, वो तो ज्यों का त्यों रहकर पूरे के पूरे दृश्य को वहां दिखा देता है। अब आप देखिए, दिखने पर भी अंदर नहीं है, अंदर नहीं होने पर भी अंदर है ऐसा दिख रहा है। अभी आपको इतना ही समझना है, प्रतिबिंब और दर्पण का संबंध क्या है। प्रतिबिंब दर्पण से अभिन्न है, दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं है? गुजराती में कहावत थी, वो मगर ने कहा मैं अपना कलेजा बाहर छोड़ के आया है। ऐसे हम लोग भी कह सकते हैं, हमारी बुद्धि कहां छोड़ के आए हैं? राज्य खाली है, सब अभी खाली है। वेद याद रखना प्रेमपुरी वालों, आप लोग को मैं बिल्कुल शर्म के बिना कह सकता हूं, ये स्थान वेदांत चिंतन के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन क्या था? प्रेमपुरी महाराज कोई वेदांत में भी गड़बड़ बोले तो फट करके कह दे, अरे उठो जाओ पढ़ के आओ, तब वेदांत की चर्चा करना। इतना कड़क प्रेमपुरी जी का महाराज का नियम था, वेदांत को छोड़कर और कोई चर्चा होती नहीं थी। महाराज श्री ने भी वही चलाया और मैं उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने वेदांत का ही ग्रंथ लिया है। यही मेरी पूजा है प्रेमपुरी महाराज की और महाराज श्री के। उन्होंने जो नियम बनाया उसमें समझदारी है। वेदांत की चर्चा, ऑल दिस वेदांत। इसलिए मैं फिर से चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सुबह सुबह शास्त्र विचार करें। थोड़ी अक्कल लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा लगाते तो थोड़ी नींद भी आ जाती है, पर लगानी पड़ती है ना। आइए, दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंबित जो भी है, पशु पक्षी गाय भैंस पर्वत तालाब आकाश में बादल पक्षी सब कुछ दिखता है, वो जो दिख रहा है वो दर्पण से इस समय अभिन्न है कि नहीं? पर दर्पण उसे क्या है? जरा दर्पण को घुमा दीजिए तो क्या है? स्वच्छ, कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ अंदर दिखने पर भी वो अंदर गया नहीं है, वो प्रतिबिंबित करते हुए भी उसमें कोई विकार हुआ नहीं है। अच्छा, बाहर जो हाथी खड़ा है वो जिंदा है और दर्पण में जो हाथी दिखता है वो जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है, तो दो हाथी हो गए ना। आप लोग क्या हमको बनना है, कितने हो गए हाथी? एक ही हो गया, दो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाथरूम में जाके आप बाहर आएंगे तो कहेंगे दो कप काल चाय बनाना, पत्नी कहेगी प्रेमपुरी में जाना बंद करो।

0: दिखते हैं दो, फिर भी है क्या एक, एक होने पर भी दो दिख रहे। इसमें दर्पण में कुछ नहीं हुआ है, दर्पण ज्यो का त्यों निश्छिद्र, कोई छिद्र नहीं है, कोई होल नहीं है जिसके द्वारा हाथी अंदर घुस गया, नहीं। दर्पण की आप छुए तो सपाटी क्या है, ज्यो की त्यों इसमें स्वच्छ है और निरिंद्र है, असंग है। पानी अंदर दिखने से दर्पण भीग जाता है, ऐसा होता है। अगर आपको सर्दी हो गई है दर्पण में देखेंगे तो दर्पण को क्या भी हो जाएगा, नहीं। आपने तेल लगाया तो दर्पण भी क्या हो गया, चिकना हो जाएगा, ऐसा होता है। दर्पण को कुछ नहीं होता है, स्वच्छ असंगे सूक्ष्म निर्विकारे प्रतिबिंबतया सती दृश्यमान अवलोक्यमाना, बस इतना एक संपर्क किया है। विश्वम निजांतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। अभी एक बात है महाराज जी, आप जरा बताइए महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारे अंदर ये जगत दिखता है, चैतन्य आत्मा में ही जगत की प्रतीति होती है, पर हमको तो लगता है ये बाहर प्रतीत होता है। हमको जगत भीतर दिखता है कि बाहर दिखता है? मैं आपको बाहर दिखता हूं कि आपके भीतर दिखता हूं? और वो है भी बाहर है, चलते फिरते स्वामी जी बाहर बैठे हैं और सुबह हमारी खोपड़ी चाट जाते हैं तो है बैठे, बिल्कुल बैठे, तो बाहर है सचमुच में है। तो आप कैसे कहते निजांतर्गतम? पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया। तो यहां कहते हैं कि आपकी माया देखो, आत्मनि स्वप्रकाशे प्रतीति विषय आश्रय माया, माया मानी क्या है, अविद्या। अविद्या के कारण एक चीज है, मैं आपको प्रश्न करता जाऊं आप कहेंगे मालूम नहीं है। आप घोड़े को जानते हैं? हाँ महाराज। मछली को जानते हैं? स्वामी जी मैं बंगाली हूं, आप मेरे नजदीक नहीं बैठ सकते हैं, बंगाली हूं। तो मछली को जानता हूं, हाँ जानते हैं, इस सब चीज को मैं जानता हूं, मछली को जानता हूं, घोड़े को जानता हूं, टेबल को जानता हूं, हैंगिंग गार्डन को जानता हूं। यहां कोई हैंगिंग नहीं है, ऐसे ही गार्डन है, हैंगिंग गार्डन नाम गलत है, कौन सा गार्डन हैंगिंग है वहां? यू हैंग आउट इन हैंगिंग गार्डन, बट देयर इज नो हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन को जानता हूं, हां। सुगर जानता हूं, मीठा चीनी, नमक को जानता हूं, चैतन्य ब्रह्म पूर्ण क्या जानता हूं कि नहीं जानता हूं? नहीं जानता हूं। ब्लैक होल नहीं जानता हूं। ये तुलसी में ऐसी गंध है कि नहीं है? ये गंध क्यों है जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन से केमिकल के कारण ऐसी गंध है? नहीं जानता हूं। तुलसी का नाम तुलसी क्यों है? इसका क्या क्या औषधि उपयोग है? नहीं मालूम है। दो चार प्रश्न करता जाओ तो आप कहेंगे आई डोंट नो। आपने अज्ञान बनाया कि है, एक चीज जन्म से लेके आए वो क्या है?
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org,
2: The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऐसा छूट जाए तो अच्छा है, बहुत से आदमी बोलता है कि नहीं, लेकिन अप्रिय वस्तु को हटाना चाहता है, अप्रिय वस्तु को सामने रखना चाहता है, प्रिय वस्तु को चाहता है अप्रिय को, तो घट वस्ति घट है, घटो भाती घट दिखता है, घट प्रिय है, घट जो प्रिय है क्यों हमारे प्रयोजन सिद्ध करता है, ऐसे घटते कर्मणा इति घट शरीरम इदम शरीरम घट है, इस शरीर को शास्त्रकारों ने घट कहा, घटते कर्मणा इति घट है, परमार्थ का साधन होने से जैसे जल भरने का पानी भरने के लिए साधन होने से घट प्रिय है, ऐसे परमार्थ के साधन होने से ये हमारा शरीर प्रिय है, अनि बात तो अस्थि भाति प्रिय ये तीन वस्तु जो है ना संसार के पदार्थों में है, इसे अस्थि भाति प्रिय कहो, सत चित आनंद कहो, अनि बात सत चित आनंद कहो, अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहो, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, ये जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म कहो, सात ज्ञान सच्चिदानंद ब्रह्म कहो, अस्थि भाति प्रिय सब पर्यायवासी है, एक ही ब्रह्म को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने इसका नाम अलग अलग रखा, वास्तव में ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म में न सत चित आनंद है, सत चित आनंद क्यों रखा है, सत इसीलिए कहा असत से अलग करने के लिए, चीत इसीलिए कहा प्रकाश अंधकार से अज्ञान से अलग करने के लिए, आनंद इसीलिए कि अप्रिय से अलग करने के लिए, अनि बात तीनों से अलग करके बतलाने के लिए कह दिया ब्रह्म कैसा है, सत चेत आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, इस ब्रह्म का उपदेश चाहता है कौन, नचिकेता, तो नचिकेता के सामने कहा नचिकेता संसार के मनुष्य के सामने दो विद्या आती है, एक श्रेय विद्या एक प्रिय विद्या, दो विद्या आती है, श्रेय विद्या चाहने कौन सा आता है, प्रिय विद्या कौन सा आते हैं, श्रेय विद्या क्या करती है, प्रिय विद्या क्या करती है, प्रिय विद्या भी तुम साधक हो तुम्हारे सामने आएगी, प्रिय विद्या भी तुम्हारे सामने आएगी, प्रिय विद्या कहेगा तुम मेरे को अपनाओ, प्रिय विद्या प्रिया त्वाम रोचति, जहां संसार की वस्तु प्रिय लगती है ना, वो प्रियता दो काम करती है, याद रखना हमेशा, एक तो बांधेगा दूसरा रुलाएगा, प्रियता दो काम करती है याद रखना, क्या क्या,
4: बांधेगी और रुलाएगी,
3: पहले प्रिय लगाएगा सुख बुद्धि करेगा फिर बांधेगा, फिर बिछुड़ा करके
4: रुलाएगा,
3: तो प्रिय विद्या दो काम करती है, आपके पास आएंगे कहेगा हम तुमको सुख दिलाएंगे, मेरे को अपनाओगे तो मैं तुमको सुख दिलाऊंगी, कैसे सुख दिलाएगी, बांध करके, किसे बांध करके, संसार के विषयों में बांध करके, संसार के विषयों में बांधेगा, कौन से रस्सी से बांधेगा, प्रियता से बांधेगा, आसक्ति से बांधेगा, मोह से बांधेगा, मोह से पैदा करके पोता पोती में मोह होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, पोता को देखते मन कितना प्रसन्न हो जाता, वो बंधन है, जहां भी पोता पोती देखोगे, घर के संबंधी देखोगे, जो सेवा करने वाला देखोगे, उसके प्रति मोह पैदा अपना आप ही हो जाता है, पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोह में बांधेगा, आसक्ति में बांधेगा, राग में बांधेगा, ये सब जो है ना बंधन का, तो सुखानुभूति राग दुखानुभूति देशा, योग दर्शन कहते राग किसको कहते, जिसमें तुम्हारा सुख का अनुभूति हो, सुख मालूम पड़ता है वही बंधेगा, तो प्रिय विद्या कहती है मैं तुमको सुख दिलाऊंगी, तुम अब मेरे को अपनाओ, संसार में प्रियता है ना, ये प्रियता क्या करेगा, बंधेगा, कैसे बंधेगा, अरे सुख बुद्धि पैदा करके बंधेगा, परा विद्या से पूछा तुम कैसे बंध, तुम क्या करोगे, बोले मैं भी तेरे को सुख दिलाऊंगी, वो कैसे सुख दिलाओगे? तो बंधन से छुड़ा करके, हाँ, बंधन से छुड़ा करके। आप दोनों विद्या में से कौन सा विद्या ग्रहण करोगे, जो छुड़ाने वाला कि बांधने वाला?
4: छुड़ाने वाला।
3: छुड़ाने वाला करोगे ऐसा? हाँ, जो छुड़ाने वाला चाहिए इनको, हाँ, छुड़ाने वाला बंधन चाहिए। छुड़ाने वाला परा विद्या, परास अपरास, परार अपरा, एक बंधेगा और एक छुड़ाएगा। तो छुड़ाने वाला विद्या नचिकेता मांगते हैं, बांधने वाला विद्या नहीं मांगते हैं, याद रखना है नहीं बात। तो छुड़ाने वाला विद्या क्या करेगा? संसार के विषयों में अनासक्ति पैदा करके, यानी बात वैराग्य पैदा करके, विवेक पैदा करके, तो तुमको संसार के बंधन से छुड़ाएगा। अभी साधक को विचार करना चाहिए कि हमको कौन सी विद्या चाहिए। हाँ, परा विद्या चाहिए, अपरा विद्या चाहिए। तो परा विद्या कौन मांगते हैं? परा स कामान अनुयंती बाला, हाँ, बालक। बालक माने अविवेकी, अविवेकी ने अज्ञानी, अज्ञानी में संसारी। ये क्या चाहते हैं? परा स कामान, बाह्य विषय कामान, पराग कामान, बाह्य विषयान, बाहर के विषयों को चाहता है। कौन? बालक, अज्ञानी। देखो, बालक शब्द का भी आता ऐसा है ना, बालक संसार में है। बालक कहते हो किसको? बाल्यावस्था वाला को बालक कहते हैं। हम कहते ना बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। तो शास्त्र बालक उसको कहते हैं, अज्ञानी को। शास्त्र जो है ना, बालक कहते हैं अज्ञानी को। क्यों? जैसे बालक को ना क्या अच्छा क्या बुरा विचार करने की शक्ति नहीं होती है ना, ऐसे अज्ञानियों के संसार में रहने में विचार नहीं होता है। संसार अच्छा है कि असंसारी, परमात्मा अच्छा है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विकारी क्या है, निर्विकार क्या है, ये विचार करने की सामर्थ्य बालक को नहीं होता है। जैसे आपको होगा ना, ये सत्संगियों को होता है। यो नित्यानित्य वस्तु का विवेक कौन करेगा? सत्संगी करेगा। जड़ चेतन का विचार कौन करेगा? जड़ चेतन, जड़ चेतन। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करता, हंस गुण कहे पारिहरी परिहरी बारी विकार। और जड़ चेतन दोनों मिला करके आपके सामने रखा है, गुण दोष दोनों मिला करके रखा है। संसार गुण दोषमय है, जड़ चेतनमय है। जड़ चेतन के बिना नहीं रह सकता, और चेतन के बिना
4: जड़ के बिना
3: चेतन नहीं रह सकता, चेतन के बिना जड़ नहीं रह सकता। दोनों मिलेगा तब संसार चलेगा, यानी बात। ये शरीर में दोनों है, इदम शरीरम क्षेत्रमिति अभिधीयते तद्जो वेति तम रहो क्षेत्र के तद्भुत बोला कि नहीं। ये शरीर जो है क्षेत्र है, क्षेत्र जड़ होता है, यानी बात। और क्षेत्र को जो जानता है वो चेतन होता है, हा? उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्षेत्र का मिलकर के संसार की यात्रा निर्वाह करते हैं। केवल क्षेत्र से भी नहीं चलेगा, और केवल क्षेत्रज्ञ से भी नहीं चलेगा। जड़ असंग चेतन असंग होता है, जड़ चेतनहीन होता तो कैसे चलेगा? तो दोनों को मिला करके ही संसार की यात्रा निर्वाह करता है। तो पराविद्या अपराविद्या दोनों विद्या साधक के सामने चल करके आए हैं, और साधक दोनों को विचार करेगा कौन सा विद्या हमको अपनाना होगा, लेना होगा, कौन सा छोड़ना होगा, यानी बात। तो अविवेकी किस क्या करते हैं, बालक क्या करते हैं? प्रिय विद्या को लेते हैं, श्रेया विद्या को नहीं लेते हैं। अनिवा श्रेयान परां स कामान अनुयंती बाला ते तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। बाहर का विषय देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् अक्षत व्यावृत चक्षु व्यावृत चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। कोई ऐसे धीर पुरुष है जो अमृतत्व की इच्छा से अपने विषयों की तरफ से संसार की तरफ से वृत्ति को हटा करके अंतरात्मा की तरफ ले जाता है। तो बाह्य विषयों की तरफ से आसक्ति को हटा करके अंतकरण की तरफ अपने वृत्ति को ले जाता है। तो ले जाकर क्या करते हैं, वो अंतरात्मा को दर्शन करने की इच्छा से ले जाते हैं। अंतरात्मा निच्छन, अंतरात्मा को जानने की इच्छा से। तो धीरा के थे अंतरात्मा कौन सा था का धीरा पुरुषा, धीर पुरुष चाहते हैं। धीर पुरुष क्या करते हैं, बाह्य विषयों की तरफ से वृत्ति को हटा करके अंतर्वृत्ति करते हैं। तो तुम कहोगे क्या भीतरी परमात्मा बाहर नहीं है क्या, नहीं है? अरे श्रुति तो कहती है बाह्याभ्यंतर मजह, वो बाहर और भीतर दोनों में वो कैसे रहते गए थे, अजन्मा अजह। ये अजन्मा आत्मा को जानना होगा तो बाहर भीतर दोनों में, बाहर भी देखो अजन्म देखो। भीतर देखोगे परमात्मा देखोगे तो बाहर देखोगे शैतान देखोगे, बाहर भी तो ही परमात्मा है ना। बाहर भी तो परमात्मा है। हरिरीव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नैव भिन्नतनो इति जस्यमति परमार्थ गति स नरो भव सागर उद्धरति। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जी कहते हरिरीव जगत, ये जगत क्या चीज है कहते, हरिरीव हरि ही है जगत, जगदेव हरि आने बात, जगत जो है ना हरि स्वरूप है। हरि तो जगत हो नहीं भिन्न दोनों हो, ये दोनों भिन्न नहीं है, हरि या जगत दोनों एक ही है। इति जस्य मति, ऐसा जिसकी मति हो गई, बुद्धि हो गई, निश्चय हो गया, स नरो भव सागरम उद्धरति, वही मनुष्य संसार सागर से पार जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म नियनास्ति किंचन वासुदेवम सर्वमिति। ये सब जगत जो वासुदेव भाई है, ऐसा नहीं समझना कि ऊपर परमात्मा रहता है, कौन है सातवां आसमान में, कहते हैं ना परमात्मा कहाँ है, मुसलमान मानते हैं ना सातवां आसमान में, हम लोग क्या मानते
5: सर्वम।
3: आपका वो जैन दर्शन कहते हैं ना, तुम्हारा कृष्ण जो नरक में है बोलता है कि नहीं, तो नरक में तो रहेगा नहीं, नारद जीव का अंतर्जामी कैसे बनेगा, नरक में भी रहेगा स्वर्ग में भी रहेगा, हमारे ऐसा नहीं, नरक तुम्हारे दृष्टि से है, जेल खाना पापियों के लिए है, अपराध करने वाला के लिए जेल खाना है, जो सीपीआई उसमें रहता है कि नहीं रहता है, जेलर रहता है कि नहीं रहता, उसके लिए जेल खाना है क्या, अपराध करने वालों के लिए नरक है, जो अपराध नहीं करते के लिए उनके लिए स्वर्ग नरक दोनों एक ही है। आनी बात, वो एक मुसलमान थे ना, मुसलमान हज करके आया तो रोजा रखता है ना, रोजा के दिनों में रोजा रखा, एक दिन इसको जो है ना प्यास लगी, अभी पानी कहाँ पिए, सब दुकानें बंद है, सराय बंद है, तो सोचा घर में जाएंगे तब बीवी तो पानी नहीं देगी, क्यों रोजा रखियो, मुलोभी हो, हज करके आए हो, हजी हो, पानी भी तो खता करते हो रोजा की, डांट देगी। तो एक झुपकी लगाए, उसने कहा गंगा जी में जाएंगे, गंगा को दरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं
5: दरिया,
3: वहां जाएंगे गोसल भी करेंगे, स्नान को गोसल बोलता है, और पानी भी पी लेंगे। तो ऐसा किया, बीबी से कहा मेरे लुंगी तो दे, बोले क्या करोगे, बोले गोसल करने जाता हूं दरिया में, अरे यहां कर लो ना, बोले नहीं आज मेरे का मेरा मन हुआ और दरिया में गोसल करने का, अच्छा जाओ। तो मलबी साहब जो है ना डुबकी लगाया, तो डुबकी लगा पानी पी रहा था, इतने कांटेदार मच्छी गला में फंस गया। कांटेदार दोनों में कांटा, छोटे छोटे मच्छी होते हैं ना कांटेदार। आप क्या करें, तू ऊपर आया हाँ, तो आ कर रहा था, एक आदमी को बोला इधर देख, तो उसने देखा एक मच्छी फंसा है, क्या करे कैसे हुआ तो उसने फिर वो छोटे से कैंची ला करके काटे काट करके मच्छी को निकाला। मौलवी साहब कैसे हुआ, अरे भाई हमने सोचा खुदा सातवां आसमान में रहता है, ओ खुदा या खुदा तू पानी के अंदर घुस गया है, मेरे को बताया कि मैं पानी पीता हूं। खुदा से कोई बात छिपती नहीं, चाहे सातवां आसमान में मानो चाहे पानी के अंदर मानो, वो सर्वत्र व्यापक है, याद रखना। पानी के अंदर नहीं मानोगे, सातवां आसमान में मानोगे तो खुदा देखेगा। वो हमारे एक दृष्टांत देना संत लोग, एक मियां और एक भैया दोनों बाजार जा रहा था, तो दोनों में तकरार हो गया। मियां कहता हमारा खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, तो भैया कहला हमारा राम सबसे बड़ा है। हाँ तो दोनों में हो गया, राम तेरा राम तो मंदिर में रहता, हमारा खुदा तो सातवां आसमान में रहता है, सबसे ऊपर रहता है इसीलिए बड़ा है। तो होते होते होते तो आखिर में क्या किया जाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे निश्चय किया जाए, बोले स्पीड पर चढ़, तू बोलना भी खुदा सबसे बड़ा है तो खुदा तेरी रक्षा करेगा, और हम बोलेंगे राम हमारा बड़ा है तो राम हमारी रक्षा करेगा, चल। तो जो था ना भैया तगड़ा था, पहलवान था, वो सोचता इसके सामने से माना करो तो पीट ही देगा, तो डर डर के मार से स्वीकार किया, हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले जो है ना राम को मानने वाला कूदा ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ करके बोला जय जय सिया राम, करे कूदा तो भगवान ने उसकी रक्षा की, क्यों भगवान तो व्यापक है, सब अंतर्यामी है, उसका हमारे पर विश्वास है, अगर विश्वास तोड़ देंगे तो मेरे को कोई मानेगा नहीं, ये तो भगवान के विश्वास है। अब मुसल्ला से कहता तू कूद, अब डर गया, इसका राम तो सब जगह में रहता है, मंदिर में रहता है, फलाना में रहता है, हमारा खुदा तो सातवां आसमान वहां से हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और नहीं देखेगा बचाएगा कैसे। तो डर के मार से चढ़ा चढ़ा चढ़ा और कांप रहा कांप रहा कांप रहा, और बोला चलो हम दोनों का नाम लेते, हाँ जिसने जो बड़ा होगा बचाएगा, जय जय राम खुदैया, समझे कि नहीं, जय जय राम खुदैया करे, खुदा ना राम ने बसाया ना खुदा ने बसाया, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं था। हाजी बात, ऐसे भगवान जो है ना सर्वत्र रहता है, हाँ जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। हाँ एक महात्मा वो भिक्षा करके लाते हैं, कुत्ता के ऊपर रख करके खाते हैं, तो एक दूसरा एक आदमी देख करके हंस रहा था, तो महात्मा बोले विष्णुपुरे सिजो विष्णु विष्णु खादत विष्णवे कसम हस्तश्री विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, विष्णु जो कुत्ता है उसको पर मैं विष्णु को रखा, रोटी को रखा, विष्णुपुरे सिजो विष्णु हूं, विष्णु के ऊपर विष्णु खादत विष्णवे, विष्णु विष्णु को खा रहा है, खाने वाला भी विष्णु और भक्ष्य जो है रोटी वो भी विष्णु है, विष्णु खाता था विष्णु भी कथम हंसशीरे विष्णु, ये विष्णु तो क्यों हंस रहा है, सर्वम विष्णुमयम जगत सर्व जगत विष्णुमय आई बात, तो इस हरियम हो गया, बेकार आया, खाने बैठते हैं ना खाना बैठने से पेट भर जाता है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
5: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ॐ नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।